सुप्रभात। एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तिथि 27, तदनुसार 18 जुलाई वर्ष 2026। प्रातः के 5:58 और 33 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ होता है। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रातः के 6 बजने को है। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली हिंदी में समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
2: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और

0: रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 6:05 हुए हैं। समय हो गया है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदनवार का। इस कार्यक्रम के लिए आइए चलते हैं विविध भारती मुंबई।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। शास्त्रों में कहा गया है, शब्द से इंसान की पहचान होती है। शब्द एक तरह का भोजन ही है। अगर स्वयं को अच्छा न लगे तो दूसरों को मत परोसिए। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुने भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा में प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। पुराने फिल्मी गीत सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर। त्रिवेणी कार्यक्रम 8:15 पर। चित्रलोक ये कार्यक्रम सुनिएगा 8:30 पर।

गायक और संगीतकार भूपेंद्र सिंह पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर और रात 9:30 पर। दस बजे गीतों भरी कहानी, भाई हो तो ऐसा, लेखक और वाचन स्वर श्याम माहेश्वरी का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी।

11:30 पर मैटिनी शो के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे रूपक जल है तो कल है। इसके अंतर्गत पर्यावरण विशेषज्ञ शुभज्योत मुखर्जी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम सुनिएगा 12:05 पर। 1 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुरीला सफर, सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम सुनिएगा 2:30 पर। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम 3 बजे से। दिन में 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे नाटक जमीन आसमान, लेखक हैं अनूप सेठी। शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिएगा लेखिका निर्देशिका सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। छाया गीत कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम सुनिएगा 5:30 पर। संध्या रंजन, ये कार्यक्रम 6:35 पर शाम।

शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। अभिनेत्री जरीना वहाब द्वारा

प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7 बजे से। ज्ञान विज्ञान का कार्यक्रम जिज्ञासा का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:45 पर। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत सुनो कहानी विश्वास का तीसरा भाग आपको सुनवाएंगे। ये है मुंशी प्रेमचंद की कहानी का रूपांतरण, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:15 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9 बजे से। भूपेंद्र सिंह पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 पर। छाया गीत कार्यक्रम रात 10 बजे से। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 10:30 पर। झरोखा में ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान भाग 253। प्रसंग है अरण्यकांड।

शूर्पणखा से खरदूषण समेत राक्षसी सेना के विध्वंस का वर्णन सुन रावण के अंग प्रत्यंग जल उठे। बालक दिखने वाले दशरथ पुत्रों की वीरता और उनके साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री के होने का समाचार जान रावण सोच में पड़ जाता है। वो जानता है कि देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, किसी योनि में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उसके सेवकों का भी सामना कर सके। यदि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए स्वयं भगवान ने ही अवतार लिया है तो वो हट पूर्वक उनसे वैर मोल लेगा और स्वयं प्रभु के वाणों से मारा जाकर मुक्ति प्राप्त करेगा। ऐसा निश्चय कर वो रथ पर अकेला सवार होकर वहां चला जहां सागर तट पर मारीच रहता था।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही है मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की कड़ी में आज सुनिए राग पूरिया कल्याण।
1: संगीत सरिता सुनने वालों को आरती अंकलीकर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप तो जानते हैं कि हम संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ विवरण कुछ चर्चा यहाँ कर रहे हैं। इन्हीं रागों में संधि प्रकाश राग पूरिया कल्याण, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कई बार हमने देखा है कि गायक जो है पूर्वा कल्याण और पूरिया कल्याण इनको एक ही राग समझ के जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्वा कल्याण एक अलग राग है और पूरिया कल्याण अलग है। पूर्वा कल्याण में जो ऋषभ है वो मारवा की तरह और पूरिया कल्याण में ऋषभ जो है पूरिया की तरह लगता है। हालांकि देखा जाए तो इसके स्वर एक ही हैं, लेकिन ये जो ऋषभ का ट्रीटमेंट जो है वो दोनों रागों में अलग है। इसकी वजह से पूरिया कल्याण और पूर्वा कल्याण ये दोनों अलग दिखते हैं। आज हम पूरिया कल्याण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पूरिया कल्याण का जो जन्म है मारवा ठाट से हुआ है। आप जानते हैं कि ये सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। संध्या काल में पूर्वी और भैरव ठाट जन्य पूर्वी गौरी आदि रागों के गाने के पश्चात इस राग को गाना चाहिए। इसका कारण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसमें धैवत जो है शुद्ध लगता है और पूरिया पूरिया धनाश्री श्री, लेकिन बाकी जो राग है उनमें धैवत कोमल है, मारवा में तो शुद्ध है। तो इन रागों को गाने के बाद यानी पूरिया धनाश्री पूरिया, इन रागों के बाद कोमल ऋषभ और शुद्ध धैवत लेके जो राग आते हैं उनकी बारी आती है। तो ये पूरिया कल्याण जो राग है संधि प्रकाश राग होने के साथ साथ एक परमेल प्रवेशक राग भी है। कोमल ऋषभ के साथ शुद्ध धैवत होने के कारण ये राग अपने पश्चात आने वाले रे ध शुद्ध वर्ग के रागों की पूर्व सूचना देता है। रे ध शुद्ध वाले रागों के पूर्व एवं रे ध कोमल वाले सायंकालीन संधि प्रकाश रागों के समय यानी कि 4 से 7 बजे सायंकाल के अंतिम चरण में इस राग को गाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो प्रचार में तो लोग 11 बजे तक भी इसको गा देते हैं बजा देते हैं, लेकिन ये उसका सही समय नहीं है। इसको 7 बजे यानी कि सायंकाल के अंतिम चरण में ही गाना चाहिए। इसका वादी स्वर है गंधा।

राग पूरिया कल्याण पर आधारित अब एक गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मशहूर गायिका आरती अंकलीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
4: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अभी आप सुन रहे थे उमा देवी और सुरैया की आवाजों में शकील बदायूनी का लिखा ये गाना। संगीतकार थे नौशाद और फिल्म थी दर्द। आइए अब सुने गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना है राजेंद्र कृष्ण की।

गेटवे ऑफ इंडिया इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार मदन मोहन। ये गाना भी मदन मोहन का स्वरबद्ध किया हुआ।

आवारा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गीत छोटे से अंतराल के बाद सुनवाएंगे।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: पान वाले वगैरह, तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: देवदास फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुबारक बेगम की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, सचिन देव वर्मन का संगीत था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए।

कुमार बाराबंकी का लिखा ये गाना था। फिल्म थी बारादरी और इसे गाया मुबारक बेगम और लता मंगेशकर ने। आज दोस्तों मुबारक बेगम की याद का दिन है। भूली बिसरी गीत कार्यक्रम के कुछ गाने उन्हीं की याद को समर्पित थे। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मल क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल सॉफ्ट

0: साहिल लुधियानवी का लिखा ये गाना था, खयाम का संगीत था, फिल्म थी शगुन और आवाजें थी तलत महमूद मुबारक बेगम की। दोस्तों आज जानी मानी गायिका मुबारक बेगम की याद का दिन है, हमें रही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी कुछ गाने हम आपको सुनवा रहे हैं मुबारक बेगम की आवाज में।
1: मुझको अब

मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गाना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन, फिल्म थी हमराही।

बाल कवि वैरागी का लिखा ये गाना आप सुन रहे थे तलत महमूद और मुबारक बेगम की आवाजों में। फिल्म थी गोगोला। गंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं महेंद्र कपूर और मुबारक बेगम की आवाजों में।

बालकवि बैरागी का लिखा गाना आप सुन रहे थे। मुबारक बेगम और तलत महमूद की आवाजों में फिल्म थी गोगोला। हमें रही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
5: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
4: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
5: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
4: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ, सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है। सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
5: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
4: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

उस्तादे उस्ताद से इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और भूपिंदर सिंह की आवाजों में। संगीतकार थे राम लक्ष्मण। दोस्तों आज भूपिंदर सिंह का जन्मदिन है, ये गाना उन्हीं के नाम था। और आज जाने माने अभिनेता राजेश खन्ना की याद का दिन है, सुनिए ये गीत उनकी याद को समर्पित फिल्म दो रास्ते। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

मिया ना मुझे न बुलाना के मार गताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मार गताना जमाना।

बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात।

0: आराधना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन। इसी के साथ आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रातः के 8 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
4: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
3: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
4: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
3: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के

0: मौके पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं ये कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन

0: समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: इन अ वैरायटी ऑफ एरियाज विद ऑल ऑफ यूरोप।
2: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचावास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
3: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
5: हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
6: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब समय हो गया है कार्यक्रम त्रिवेणी का।
1: आइए सुनें

सिलसिला। ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो किसी न किसी सिलसिले का हिस्सा होता है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंतिम पहर तक हर पल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रिश्तों का सिलसिला, सपनों का सिलसिला, संघर्षों का सिलसिला और सफलताओं का सिलसिला, यही जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि प्रकृति भी एक अनवरत सिलसिले पर ही आधारित है। ऋतुओं का बदलना, नदियों का बहना, समय का आगे बढ़ना हमें यही सिखाता है कि रुकना जीवन का स्वभाव नहीं है। जीवन तब तक सुंदर है जब तक उसके भीतर आगे बढ़ने का सिलसिला बना रहता है।

की राख से ही नए अवसर जन्म लेते हैं। इसलिए कठिन परिस्थितियां हमें निराश करने के लिए नहीं बल्कि एक नए सिलसिले की शुरुआत करने के लिए आती हैं। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं वे हर अंत में एक नई शुरुआत खोज लेते हैं।

जीवन के इस सफर में कई बार कुछ सिलसिले अचानक टूटते हुए प्रतीत होते हैं। कोई अपना दूर चला जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, या परिस्थितियां हमारी उम्मीदों के विपरीत हो जाती हैं। ऐसे क्षणों में लगता है कि सब कुछ थम गया है, लेकिन वास्तव में जीवन कभी रुकता नहीं। एक अध्याय समाप्त होता है तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है। यही समय का नियम है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई भी। टूटे हुए सिलसिलों

मानव सभ्यता का इतिहास भी एक लंबे और प्रेरणादायक सिलसिले की कहानी है। पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन ज्ञान, संस्कार, संस्कृति और अनुभवों का प्रवाह लगातार आगे बढ़ता रहा। आज हम जो कुछ हैं, वो उन अनगिनत लोगों के प्रयासों का परिणाम है जिन्होंने अपने समय में कुछ अच्छा करने का सिलसिला जारी रखा। यही कारण है कि हमें भी अपने कर्मों, अपने मूल्यों और अपने सकारात्मक विचारों का सिलसिला बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे प्रयास भविष्य की किसी बड़ी कहानी का आधार बन सकते हैं। अंततः जीवन का सार यही है कि हम उम्मीद, प्रेम और मानवता का सिलसिला कभी टूटने न दें। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, तब तक जीवन में अर्थ, ऊर्जा और आनंद बना रहेगा।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनिए कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत

सुनने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें अपनी फरमाइश भेजें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है AIR चंडीगढ़। तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का स्वागत कर रही हूं, मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज जाने माने पार्श्व गायक सुखविंदर सिंह का जन्मदिन है, चलिए विविध भारती परिवार की ओर से देते हैं उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। उन्हीं की आवाज में ये गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं, इस्माइल दरबार का संगीत, फिल्म कांची, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजें।

0: सुल्तान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में शब्दकार थे इरशाद कामिल और संगीतकार विशाल शेखर।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।

गुरु रंधावा की आवाज में ये गाना आप सुन रहे थे, फिल्म थी हिंदी मीडियम। आज जानी मानी फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्मदिन है। प्रियंका चोपड़ा को देते हैं हम ढेर सारी बधाइयां पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। फिल्म है क्रिश 3, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें, समीर अंजान के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

0: की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर दोस्तों इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और आज जानी मानी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्मदिन है। साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रियंका चोपड़ा ने अभिनय की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बॉलीवुड की सफल फिल्मों से लेकर हॉलीवुड के प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट्स तक उन्होंने हर मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अभिनय के साथ साथ वे एक सफल निर्माता भी हैं और समाज सेवी भी हैं। शिक्षा, बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर भी वे सक्रिय भागीदारी देती हैं समय समय पर। प्रियंका चोपड़ा की कहानी हमें ये विश्वास भी दिलाती है कि आपके इरादे अगर मजबूत हैं, मेहनती हैं आप, तो मंजिल आप जल्द पा सकते हैं। चलिए उन्हीं की फिल्म का गाना सुनते हैं। ये फिल्म मेरी कॉम, अरिजीत सिंह की आवाज है, संदीप सिंह के बोल हैं, शिवम का संगीत।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से ब्रेक के बाद।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि

0: एचआईवी पॉजिटिव माँ भी एचआईवी नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान एचआईवी टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
0: एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे एआरवी दवाइयां लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो तो माँ एक हेल्दी एचआईवी नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
0: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। यूटी चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
4: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
3: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
4: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
5: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: The Sky is Pink, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। रचना थी गुलजार की, संगीतकार प्रीतम।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट दिया रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

तुम बिन टू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आर्को और साथियों की आवाजों में मनोज मुंतशिर के बोल थे। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता।

0: घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: आजा आजा दिल के गा।

0: डेढ़ इश्किया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज की आवाज में। गुलजार के बोल थे, विशाल भारद्वाज का संगीत था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
1: कहीं बेख्याल हो कहीं यूं ही चूलिया किसी ने।
0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
2: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे,
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: नमस्कार बीबी और गैंगस्टर 3। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे नूरा सिस्टर्स अमित गुप्ता और साथियों की आवाजों में। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाड़ी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 9:30 हुए हैं और ये समय है हमारे कार्यक्रम आज का अखबार का।
3: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
4: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
5: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
4: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
5: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
6: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
2: नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का अखबार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं शालिनी। दोस्तों कैसे हैं आप? भाई हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि कल जो हमारा शहर है उसके लिए बहुत ही खास दिन रहा और सौगातों से भरा दिन।

रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंडीगढ़ विजिट की। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो हमें मिल चुकी है। जी हाँ, भारतीय रेल ने जिस गति से काम किया उसका परिणाम आज ये है कि आज भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर उतारने में सफल हो गया है। 2014 से पहले की बात करें तो पूरे रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण होने में 300 वर्ष लग जाते, लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन ट्रेन जो कि एक सपने जैसा लगता था वो यथार्थ में बदल चुका है। जींद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे और हरी झंडी दिखाकर इस रेल को रवाना किया गया। साथ ही साथ मेक इन इंडिया अभियान की भी बात की प्रधानमंत्री ने कि मेक इन इंडिया का सफल उदाहरण है हाइड्रोजन ट्रेन। ट्राइसिटी की बात करें तो ट्राइसिटी में 4,700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जालंधर भी गए, वहां पर भी उन्होंने कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि पंजाब को 5,472 करोड़ की सौगात मिली है और हरियाणा को दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की बात करें, अंबाला काला अम्फोल इन राजमार्ग की बात करें, जींद गोहाना ग्रीनफील्ड राजमार्ग, हांसी बरवाला हाईवे का शिलान्यास किया गया, कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन, भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया और चंडीगढ़ में पीजीआई चंडीगढ़ में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने की भी उन्होंने घोषणा की है और साथ ही साथ एडवांस्ड न्यूरो साइंस सेंटर का उद्घाटन उन्होंने किया, एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर का उद्घाटन किया, पीजीआई में नए क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास, आईटी सिटी कुराली 6-लेन कॉरिडोर की सौगात भी हमें मिली है, PR7 ट्राई सिटी रिंग रोड से कनेक्टिविटी को रफ्तार देंगे, सेक्टर 46 राजकीय महाविद्यालय छात्रावास की परियोजनाओं का भी उद्घाटन कल किया गया और बहुत सारी सौगात देकर गए हैं प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान, चाहे वो बात हो हरियाणा की, चाहे पंजाब की या फिर हमारे सिटी ब्यूटीफुल की। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो शुरुआत हुई है, खासकर हाइड्रोजन ट्रेन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे हमारे देश का जो नाम है वो उन देशों की सूची में आ गया है जो कि स्वच्छ ईंधन को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, हमारा देश यूं ही तरक्की करता रहे और आगे बढ़ता रहे, यही हमारी कामना है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के साथ और यह है कार्यक्रम आज का अखबार। इस कार्यक्रम में अब बारी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों की, यानी हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी सौगात, हरियाणा में दौड़ी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। हरजीत ग्रेवाल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतदाता सूची से नाम हटने का मतलब नागरिकता समाप्त होना नहीं। गुजरात में जैश से जुड़े 5 और संदिग्ध आतंकियों को एटीएस ने किया गिरफ्तार। 10 दिन पहले गिरफ्तार किए थे 8 संदिग्ध। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों और डॉक्टरों को लगाई फटकार, कहा जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो डॉक्टर कहलाने का हक नहीं।

अगले वर्ष तक बाजार में आ सकते हैं प्लास्टिक के नोट। सेंसेक्स 965 अंक चढ़ा, सोना तीन सप्ताह के निचले स्तर पर। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। गैंगस्टर नीतीश कौशल को एफबीआई ने किया गिरफ्तार, हिट लिस्ट में था नाम।

ईरान पर अमेरिकी हमले, हवाई हमले तेज, चाबहार बंदरगाह पर टावर ढहता दिखा। और एंडी बर्नहैम बनेंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। तो ये थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार। अब एंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
2: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
3: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
2: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, UP और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
3: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
4: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
4: जग घूमे आधार जैसा ना कोई।
3: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
3: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

कार्यक्रम आज का अखबार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ से। और इस कार्यक्रम में अब आपके लिए लेकर आए हैं लोकल और रीजनल हेडलाइंस।

पहले खबरें ट्राई सिटी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्राई सिटी को दी 4,700 करोड़ की मेगा सौगात। ट्राई सिटी में स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा को दी नई ताकत। प्रधानमंत्री बोले, चंडीगढ़ विकसित भारत का मॉडल। पीजीआई में जल्द शुरू होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। मोहाली कालका रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री ने किया वर्चुअल लोकार्पण। सीजेआई सूर्यकांत आज करेंगे सेक्टर 43 मल्टीलेवल पार्किंग का लोकार्पण।

और अब बारीक क्षेत्रीय समाचारों की, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी खबरें। पंजाब में गर्मी और उमस का कहर जारी, 20 जुलाई से भारी बारिश की संभावना। पंजाब की 27 जेलों में बनेंगी ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से बैरक, 424 थानों में टॉयलेट और लॉकअप।

चंडीगढ़ में नए फायर एक्ट के नियम, अब इमारत की ऊंचाई की बाधा हटेगी, कई दुकानदार मिलकर लगा सकेंगे अपना फायर सिस्टम।

19 जुलाई को पंजाब के सभी पोलिंग बूथों पर लगेगा SIR अभियान के तहत मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए कैंप। छुट्टी के दिन भी ड्यूटी करेंगे BLO।

0: कुरुक्षेत्र को 617 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, पीएम मोदी ने जींद रैली से वर्चुअली किया शिलान्यास व उद्घाटन। रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का लोकार्पण, उमरी में 170 करोड़ से बनेगा प्रदेश का पहला सिख संग्रहालय। हिसार में सिविल सर्जन समेत 8 चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस। और हिमाचल प्रदेश में पीजी मेडिकल सीटों का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार प्रस्तावित, 277 से 597 सीटें करने की तैयारी। तो ये थी लोकल और रीजनल हेडलाइंस, और इसके बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद आपके लिए प्ले करेंगे एक म्यूजिकल नंबर।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: और श्रोताओं, अब वक्त कह रहा है कि फिलहाल इस कार्यक्रम से आपसे ले लें इजाजत। तो मैं शालिनी इसी दुआ के साथ कि आपका आज का दिन हो शुभ, आप रहें हैप्पी हैप्पी, कार्यक्रम आज का अखबार से आपसे लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र, 10 बजने को है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
5: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है। इसे हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये रॉकेट मिशन आगमन के तहत सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है।

0: इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों, खासकर युवाओं से इस ऐतिहासिक मिशन को देखने और टीम स्काईरूट की सफलता की कामना करने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडार्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चौथे नंबर की चार चेन यू की खिलाफ पहला गेम 21-19 से जीता। वहीं दूसरे गेम में वो 15-10 से आगे थी, तभी चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इसके बाद सिंधु को विजेता घोषित किया गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। वहीं बिहार, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बारिश की संभावना है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
2: सूट, साड़ी, लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950633224।

0: पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की

0: सूचना हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: और श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुरीला सा। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को शालिनी का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं उनकी आवाज के साथ जो न जाने कितने दिनों पर राज करते हैं, और आज है उनका जन्मदिन। जी हां, सुखविंदर सिंह की बात कर रहे हैं, आज उनका जन्मदिन है, तो आज उन्हीं के चंद गीत आपको सुनवा रहे हैं। और ये खूबसूरत गीत ताल फिल्म से, उनका साथ दे रही हैं अलका याग्निक।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

दोस्तों आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सुखविंदर सिंह को इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है सफर सुरीला सा, और सुरों के राजा कहे जाते हैं सुखविंदर सिंह, क्योंकि जैसे ही वो सुर छेड़ते हैं दिलों के तार भी छिड़ जाते हैं। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुखविंदर सिंह की ही आवाज में।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लई स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाड़ी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है सफर सुरीला सा। और इस सुरीले सफर में आज हम बात कर रहे हैं सुरों के राजा सुखविंदर सिंह की, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। पंजाब के अमृतसर में पैदा हुए सुखविंदर सिंह, और 17 वर्ष की आयु तक उन्हें खेलों में बहुत रुचि थी। 17 वर्ष में आकर उन्हें ये महसूस हुआ कि संगीत की ओर उनका रुझान है, और फिर मिला हम सबको वो नायाब सितारा जिसका नाम है सुखविंदर सिंह। फिर तो उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने गीत गाए, इतनी ख्याति प्राप्त की, और यहां तक कि उनका गीत ऑस्कर में भी जीता। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस गीत की।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: और हम चाहते हैं कि सुखविंदर सिंह हमेशा यूं ही गाते रहें, हमेशा हमें यूं ही एंटरटेन करते रहें। उनके लिए हमारी ओर से बर्थडे की बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। और उन्हीं का गाया ये गीत किल दिल फिल्म से। इनका साथ दे रहे हैं शंकर महादेवन और संगीत भी शंकर एहसान लॉय का ही है।

0: इससे पहले जो गीत आपने सुना था वो था कच्चे धागे फिल्म से और संगीत था नुसरत फतेह अली खां का, गीत था आनंद बख्शी का लिखा।
1: बस आशिकों

और सुखविंदर सिंह के गाए इसी गीत के साथ अब आज का सफर सुरीला सा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। शालिनी को दीजिए अनुमति, नमस्कार। ये आकाशवाणी है और आप सुन रही हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 10:30 हुए हैं और ये समय है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पॉप टाइम का।

0: पॉप टाइम प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार।
1: हेलो मेरे आइसक्रीम जैसे ठंडे मिठे पाजी।
0: हेलो पिंके, हो गए आते ही स्टार्ट।
1: पाजी मैं तो घर से ही स्टार्ट हूँ, टीडी टी करके। आपके ही प्लग में गंद सा, मेरा मतलब है कचरा सा आ गया है, टीडी टी करके।
0: पिंके तुम नहीं सुधरोगे।
1: हाँ जी पाजी, नहीं सुधरना, कर लो जो करना, टीडी टी करके। वैसे पाजी आज आप बड़े सोने लग रहे हैं। जरूर परजाई जी ने जो एक हफ्ते पहले मलाई जोड़ी होगी ना, वही लगाई होगी मुंह पर, टीडी टी करके।
0: पिंके ये तुम क्या कह रहे हो?
1: पाजी आपकी तारीफ के वड्डे वड्डे फ्लाईओवर बना रहा हूँ हवा में, टीडी टी करके। मालको अब उतरो इस फ्लाईओवर से और दे दो गाने का टोल टैक्स, नहीं तो श्रोता फिर कहेंगे बातें ही करते रहते हैं, बातें ही करते रहते हैं, गाना तो सुनाते नहीं, टीडी टी करके।

0: और सच पाजी एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया।
1: अच्छा तो अब बता दो ना पिंके।
0: पाजी कल रात मैं जैसे ही सोया
1: तुमने एक अजीब सपना देखा।
0: नहीं पाजी बिजली चली गई। मारे गर्मी के मैं इधर से उधर उधर से इधर घूमने लगा, तभी
1: क्या हुआ पिंके
0: बिजली आ गई टीरी टी करके। मैं फिर सो गया, जैसे ही मेरी आंख लगी
1: बिजली चली गई।
0: नहीं भाई मैंने बड़ा अजीब सपना देखा।
1: अच्छा क्या था वो सपना सुनाओ ना।
0: भाजी सपने में आप ना मेरे ट्रक ड्राइवर थे।
1: क्या ट्रक ड्राइवर
0: ना, और आपको मैं सलमान खान बनाऊं। सपने में टीडी टी करके।
1: पिंके सुधर जाओ।
0: भाजी अब आप ना मुझे बाद में सुधारना, पहले सुनाओ एक गाना, नहीं तो श्रोता फिर कहेंगे बातें ही करते रहते हैं बातें ही करते रहते हैं, गाना तो सुनाते नहीं टीडी टी करके।

0: अच्छा पिंके, गाना भी सुन लिया, अब बताओ ना सपने में आगे क्या हुआ।
1: पाजी, आपने जैसे ही कहीं जाने के लिए अपना ट्रक स्टार्ट किया, ओए होए होए होए, आपको ना सड़क पर बाबे आदम के जमाने का दिया मिला।
0: अच्छा, मैंने उठा लिया होगा वो दिया।
1: हाँ जी बाजी, फ्री की चीजें छोड़ते कहाँ हो आप। बाजी, वैसे कई बार सड़क से ऐसी लवारिस चीजें उठाना बड़ा खतरनाक हो सकता है।
0: हाँ पिंके, बिल्कुल।
1: तो फिर सपने में आपने वो दिया क्यों उठाया? उठाया तो उसे रगड़ा क्यों? तुमने क्या सोचा ठाकुर? दिया बहुत खुश होगा, जिन देगा का। पाजी, आप अलादीन का वो दिया समझ के रगड़ने लगे, दीवा रगड़ रगड़ के आपके अंगूठे की टीरी टी हो गई, वड्डा छाला पै गया, जैसे सास के लिए पकौड़े तलते तलते तेल का अंगूठे पे छीटा पड़ गया हो और चाला पड़ गया हो टीरी टी करके।

0: भाजी डीएम ऐसे ना
1: क्या निकला
0: सोंज काम टीरी टी करके
1: सोहन डीएम ऐसे निकला
0: नहीं भाजी पास वाली झाड़ियों से निकला
2: ओ मैंने यहाँ दिया रखा था कहाँ चला गया लगता है चोर उठा के ले गया

0: ਵੀ ਅੱਛੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਸ ਜਕਾਬ ਦੇ ਬੇਰਾ ਦਾਸ ਹੀ ਬਾਰ ਦਿਆ ਹੈ
1: ਉਹ ਸੱਚ ਭਾਜੀ ਇਸ ਸੌਣ ਕੇ जकाम के चक्कर में मैं तो एक बात ही आपको बताना भूल गया।
0: तो पिक्के अब बता देना पाजी को कौन सा जकाम हो गया है। हाँ हाँ पिंके बताओ ना क्या हुआ।
1: पाजी कुछ दिन पहले ना 10 चूहे हमारे पड़ोसी की रसोई के गटर से होते हुए हमारे घर में घुस गए। किसी ने हमारा सोफा फाड़ दिया, रजाइयां फाड़ दी। पाजी बड़ा नुकसान कर दिया उन चूहों ने।
0: अच्छा।
1: हाँ जी भाजी, वो तो हमने चूहे मार दवाई की गोलियां रखी थी। 9 चूहे गोली खा के मारे गए, पर एक चूहा पिंजरे में रोटी के लालच में फंस गया टीडी टी करके।
0: बेची भाजी तभी तो कहते हैं लालच बुरी बला, लालच वड्डे वड्डो का डांस मार देती है। फिर ये तो चूहे थे चूहे।
1: भाजी पड़ोसी की रसोई के गटर से आए थे, पानी से तार थे 10 के 10 चूहे।
2: पर पिंके तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये चूहे पड़ोसी की रसोई से आए थे?
1: भाजी जब मैंने अपने पड़ोसी से कहा भाई तेरी रसोई के गटर से ये आए हैं चूहे, तो वो भी यही कहने लगा कि क्या सबूत है। पर भाजी मेरा दोस्त है अमरीक सिंह, मैंने उसे बताया, पूरे मोहल्ले में उसकी ताकत का टोल बजता है। अमरीक सिंह ने भी 2 टुक मेरे पड़ोसी को कह दिया कि अपने चूहों पर लगाम लगा और अपनी रसोई में सफाई करा, नहीं तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा टीडी टी करके।
0: वैसे भाजी बिल्कुल सही बात है अमरीक सिंह की कि पिक्के का पड़ोसी पल्ले क्यों देता है अपनी रसोई में चूहे, सफाई क्यों नहीं रखता।
1: भाजी अब अमरीक सिंह के दबाव में ना मेरे पड़ोसी ने वादा किया है कि वो अपनी रसोई में चूहे मार दवाई रखवा देगा टीरी टी करके।
0: ओए पिक्के कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, क्या पता बाद में तेरा पड़ोसी अपने वादे से मुकर जाए।
1: ओए सोन मुकर नहीं सकता। हाँ वो मेरा पड़ोसी मेरे दोस्त अमरीक सिंह से बहुत डरता है। हाँ अमरीक सिंह के आगे तो उसकी बोलती बंद हो जाती है टीडी टी करके।
2: पिंके अब तुम अपने पड़ोसी के चूहों पर लगाम लगाओ तो मैं तुम्हें गाना सुनाऊं।
1: हाँ जी मेची भाजी, नहीं तो फिर श्रोता कहेंगे बातें ही करते रहते हैं, बातें ही करते रहते हैं, गाना तो सुनाते नहीं टीरी टी करके।

0: अच्छा मिच्छी भाजी अब मैं चलूं, मेरे चन्नो जी के बगैर दिल उदास हो गया है टीरी टीं करके।
1: पिंके जाओ।
0: अच्छा भाजी ओके बाय।
1: अच्छा मिच्छी भाजी अब मैं भी चलता हूँ, नमस्कार।
2: नमस्कार सोहन, बाय पिंके। श्रोताओ आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें टेलीफोन करें। हमारे फोन इन प्रोग्राम्स में नंबर है 2660615 और 2660617। अब आज का पॉप टाइम प्रोग्राम समाप्त करने की अपने इस दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पॉप टाइम, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 11 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: और लीजिए श्रोताओ, सुनिए अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस।
2: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: प्रोग्राम सुन रही सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार। हमारे सभी प्यारे श्रोताओं का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी तो आज भी आपने इंस्टाग्राम पर ढेर सारी अपनी फरमाइशें हमें भेजी हैं और इस प्रोग्राम को आप बहुत प्यार करते हैं, ये भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, आपका बेहद शुक्रिया। तो चलिए करते हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गाना। इस प्रोग्राम की शुरुआत में यशुदास का गाया हुआ गीत और संगीत श्रोताओं रविंद्र जैन का है, फिल्म है चितचोर। ये फरमाइश हमें किसने लिख भेजी है ये हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे।

तो ये प्यारा सा सुंदर सा गाना यशुदास की आवाज में आप सबने सुनना चाहा चितचोर फिल्म के लिए। आप ही जी नांदेड़ इताला महाराष्ट्र के हमारे श्रोता शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल, आपने अपनी पसंद जरूर सुन ली होगी। अब सुनते हैं अजनबी फिल्म का गाना, किशोर कुमार ने इसे गाया है। पसंद है आप सबकी। हरियाणा के हमारे श्रोता हैं आप, विनय मोहन खार, मीनाक्षी, पलोमा और डॉक्टर ईशानी। सुनिए आपकी पसंद।

मुलाकात की बात हो रही है तो अगला गीत जो चुना है ना हमने आपके लिए, उसमें भी मुलाकात का ही जिक्र है, लेकिन ये पसंद तो भी हमारे श्रोताओं की ही है। और श्रोता है हमारे चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। बड़ा ही प्यारा गाना चुना है आपने पराया धन फिल्म के लिए किशोर कुमार की आवाज में। तो चलिए सुन लेते हैं मिलजुल कर आपकी।

आप सुन रही हैं इस समय प्रोग्राम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस में हूँ आपके साथ सुनीता भगत और अगला गीत जो हमने चुना है आप ही की पसंद पर बड़ा प्यारा सा बच्चों का एक गीत है वनीता मिश्रा गौरी बापट और गुरप्रीत का गाया हुआ मासूम फिल्म के लिए गुलजार ने इसे लिखा है धुन बनाई है आर डी बर्मन ने पसंद है जी आप सबकी आप हैं हमारे श्रोता सेक्टर 9 पंचकुला से आशु चुग अश्वनी चुग गोविंद चुग टोनी दीवान लव दीवान राधे भाविका ढींगरा

तो श्रोतो, अब जो गीत आप सुनेंगी ये सुखविंदर सिंह की आवाज में है। दिल से फिल्म का नाम है। आज सुखविंदर सिंह का जन्मदिवस भी है। हमारे श्रोता बड़े जागरूक हैं, शायद इसीलिए उन्होंने इस

गीत की फरमाइश की है। तो आप हैं हमारे श्रोता जो ये गीत सुनना चाहते हैं, आपके नाम हम पढ़ देते हैं। आप हैं जी दुधला मंडी अंबाला कैंट से, ललिता पाल, हुकमचंद, ईशु, निशु और आपके परिवार के अन्य सदस्य। ये रही आप सबकी पसंद।

लोफर फिल्म का एक गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को सुनने के लिए आप सबने हमें फरमाइश लिख भेजी है। आप हैं हमारे श्रोता महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार। लीजिए हाजिर है आप सबकी पसंद।

ये गीत है कभी कभी फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सब हमारे श्रोता। आप हैं जी अंबेडकर कॉलोनी ढकोली जिला मोहाली से, सुरेंद्र कुमार, माधुरी सिंह, आराध्या सिंह, अनंत और कायरा। सुनते हैं आपकी पसंद पर कभी कभी फिल्म से ये गीत।

0: विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। अगला गीत सुनते हैं, सुनवाते हैं आपको इस संदेश के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: ये गीत है अपनापन फिल्म से, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की हैं। फरमाइश है आप सबकी, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से आप हैं अनिल कुमार गौड़ की, वैशाली प्रजाक्ता गौड़ की, वैष्णवी गौड़ की, गायत्री गौड़ की और यज्ञेश गौड़ की।

बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिल्का के हमारे श्रोता हैं रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, प्रीति वर्मा, सिद्धक वर्मा, प्रियांशी वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा। आप हैं जी मोहाली एरो सिटी ब्लॉक जी से हमारे श्रोता सर्वेश कुमार कनौजिया। आप सबने सुनना चाहा है एक नजर फिल्म का गीत, किशोर कुमार ने इसे गाया है। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और ये गीत लिखा है श्रोताओं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में आइए अब सुनते हैं अभिजीत का गाया गीत। इसे लिखा है इसरार अंसारी ने हासिल फिल्म के लिए। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं हमारे श्रोता धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया आयान बाबू। इसी गीत को आपने भी सुनना चाहा है गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी। आप हैं प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर हासिल फिल्म से ये गीत।

आप हैं जी हमारे श्रोता दातागंज जिला बदायूं से, इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, सबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान। आप सबने सुनना चाहा है स्वीकार किया मैंने फिल्म से गीत। इसी गीत को आपने भी पसंद किया है। आप हैं मुंडी खरड़ से विजय तनवर और ममता।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
1: आप सुन रही हैं इस समय अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, और अगला गीत जो आप सुनेंगे आशा भोसले ने इसे गाया है दो कलियां फिल्म के लिए। गीत की धुन बनाई है रवि ने और इस गीत को पसंद किया है आप सबने। आप हैं जिला मुरादाबाद गांव दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून।

म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। इस समय कार्यक्रम का अगला गीत हमने चुना है जबक फिल्म के लिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं हमारे श्रोता। सेक्टर 9 पंचकुला से स्नेह गुलाटी, रमेश गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, दिवांशु गुलाटी, चित्रांशु गुलाटी और गुलाटी परिवार के सभी सदस्य, ये रही आप सबकी पसंद।

0: आपने सुना कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम का समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। श्रोताओं, सुनीता भगत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: FM 107.2 MHz पर ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 12 बजने को ही श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली से अब हम आपके लिए समाचार रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अब से कुछ देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड

0: वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आर फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएमएक्स 7.2 मेगाहर्ट्ज पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय 12:05 हुए हैं और अब समय है यादों की महफिल कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम हम आपके लिए बस थोड़ी ही देर में अपने मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
3: दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट दे रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
6: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

अमर प्रेम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। दिन की इस भागदौड़ में दिन की 12:11 विविध भारती यादों की महफिल। मस्ताना प्यार मेरा दीवाना।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: जो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये
0: सोहा। विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
4: होठ

0: जी है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट दिया रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सईद परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

नमक हराम फिल्म का गाना आपने सुना। फिल्म का नाम है धड़कन, किशोर कुमार की आवाज।

अजनबी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना आनंद बख्शी की बोल थी, आर डी बर्मन की तर्ज थी, राजेश खन्ना की याद, यादों की

आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम श्रोताओं हमने आपके लिए विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजा है, इस समय आप सुना करते हैं कार्यक्रमों का विवरण। तो अब से थोड़ी ही देर में 1:05 पर हर रोज की तरह आज भी आप प्रादेशिक हिंदी समाचार सुनेंगे। प्रादेशिक हिंदी समाचार शाम 6:10 पर भी सुनवाए जाएंगे। दोपहर 1:10 पर प्रादेशिक हिंदी समाचारों के बाद आप प्रादेशिक पंजाबी समाचार सुनेंगे। शाम 6:20 पर भी हम आपको सुनवाएंगे और ये पंजाबी समाचार आपके लिए जालंधर केंद्र से हम रिले करेंगे। हमारे यहाँ से फिल्म संगीत सुन सकते हैं आप दोपहर 1:15 पर और फिर शाम 5:05 पर भी। मुंबई केंद्र से फिल्मी गीतों का सुरीला सफर कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर। वहीं से त्रिवेणी प्रोग्राम सुन सकते हैं आप दोपहर 2:00। आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे दोपहर 2:15 पर, शाम 5:00, शाम 6:00, रात 8:45 पर और फिर श्रोताओं रात 11:00 भी। सदाबहार नगमे सुनेंगे दोपहर 2:30 पर मुंबई केंद्र से। दोपहर 3:00 वहीं से आज होगा कार्यक्रम मनचाहे गीत। फिर 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम होगा, इसमें सुनेंगे नाटक जमीन आसमान। शाम 4:00 हर रोज की तरह पिटारा कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। आज पिटारा कार्यक्रम में बॉम्बे टॉकीज सिलसिले के तहत लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से की गई बातचीत सुन सकते हैं आप। हमारे केंद्र से शाम 5:20 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। शाम 5:30 पर होगा कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। कुछ पंजाबी गीत सुनवाएंगे आपको शाम 6:30 पर। शाम 7:47 पर भी पंजाबी गीत सुन सकते हैं आप। इसके अलावा पंजाबी गीत अगर आप सुनना चाहें तो रात 10:32 पर श्रोताओं पंजाबी गीतों का हमारा कार्यक्रम होता है सुर सांझ। शाम 7:00 विविध भारती के मुंबई केंद्र से आज विशेष जयमाला कार्यक्रम रिले किया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम सैनिक भाइयों के लिए प्रस्तुत करेंगी अभिनेत्री जरीना बहाव। हमारे यहाँ से प्रादेशिक मुख्य समाचार हम आपको

0: सुनवाई करते हैं शाम 7:45 पर और फिर श्रोता रात 10:30 पर भी। हवा महल कार्यक्रम होता है रात 8 बजे। ये कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से हम रिले करते हैं। आज हवा महल कार्यक्रम में सुनो कहानी सिलसिले के तहत मुंशी प्रेमचंद की कहानी विश्वास का 3रा भाग सुनवाया जाएगा। नई फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक रात 8:15 पर वहीं से रिले होगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके लिए रात 9 बजे। आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 पर हम वहीं से रिले करेंगे। आज के फनकार हैं गायक और संगीतकार भूपेंद्र। फिर रात 10 बजे श्रोताओं उद्घोषक की पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये कार्यक्रम भी हम आपके लिए मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM 107.2 MHz पर ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक हिंदी समाचार। इसके फौरन बाद श्रोताओं 1:10 पर आप प्रादेशिक पंजाबी समाचार सुन पाएंगे जो हम जालंधर केंद्र से आपके लिए रिले करेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से संबंधित लगभग 4,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इस अवसर पर शहर के आधुनिकीकरण के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, स्मार्ट यातायात प्रबंधन, स्मार्ट पार्किंग और डिजिटल शासन पहल सहित विभिन्न परियोजनाओं ने चंडीगढ़ को एक उच्च तकनीक वाले शहर में बदल दिया है, जिसमें मिशन के तहत 2,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास के लिए एक बेंचमार्क बताया।
2: चंडीगढ़ केवल एक शहर नहीं, ये भारत के लिए डेवलपमेंट का एक मॉडल रहा। चंडीगढ़ जाना जाता है व्यवस्थित विकास के लिए। चंडीगढ़ की पहचान है बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए। चंडीगढ़ की पहचान है चिकित्सा की बेहतर सुविधाओं के संबंध में। और इस सबके साथ साथ चंडीगढ़ की पहचान है माँ चंडी का आशीर्वाद। और इसलिए चंडीगढ़ का विकास हमेशा से NDA सरकार की प्राथमिकता रहा है।
1: श्री मोदी ने स्वच्छता से स्वागत अभियान की सराहना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का काम नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। उन्होंने इस विशेष सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए शहर के नागरिकों की व्यक्तिगत रूप से बहुत तारीफ की। उन्होंने लोगों से स्वच्छता को अपनी आदत में शुमार करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू की जमकर सराहना की।
2: साथियों, मैं आज चंडीगढ़ के रिटायर्ड IPS अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू जी की भी सराहना करना चाहूंगा। उनकी पहचान रूम वॉरियर की बनी हुई है। उन्होंने चंडीगढ़ में स्वच्छता को लेकर एक नई अलग जगाई, लोगों को प्रेरित किया। इसके लिए हमारी सरकार ने उन्हें इस साल पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया है। साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन लोकार्पित किए। इनमें जालंधर छावनी, आनंदपुर साहिब, मोहाली, नरवाना, कालका और अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने वहां से 5,470 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरूआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जींद में पीएम आवास योजना ग्रामीण के 5 लाभार्थियों को मंच पर प्रतीकात्मक रूप से घर की चाबी सौंपकर उनके अपने घर का सपना पूरा किया। श्री मोदी ने जींद और हरियाणा के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छता से स्वागत पहल को लोगों ने जिस गंभीरता से लिया है वो दिल खुश कर देने वाला है। पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया में सफाई अभियान की भारी चर्चा रही है। उन्होंने कहा कि सभी लोग यह

0: कर लें कि स्वच्छता ही हमारा स्वभाव बने, स्वच्छता ही हमारे संस्कार बना देंगे, हम स्वच्छता को इसी तरह अपनी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के जींद दौरे से पहले उनका स्वागत स्वच्छता से करने के लिए हरियाणा में 13 से 17 जुलाई तक स्वच्छता से स्वागत अभियान चलाया गया था। हरियाणा के पलवल में शिक्षा विभाग स्कूली छात्रों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई से 5 अगस्त तक खंड स्तरीय व जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करेगा। शिक्षा विभाग द्वारा यह खेल प्रतियोगिता स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में करवाई जाएगी। पलवल के सहायक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जसवीर तेवतिया ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पलवल जिले के सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के प्रतिभागी भाग लेंगे।
1: हमारी 20 तारीख से खंड स्तरीय प्रतियोगिताएं प्रारंभ होने जा रही हैं, जिसमें हमारे चार खंड हैं, पलवल, हतीन, होडल और हसनपुर। एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, एथलेटिक्स और कुश्ती, ये हमारी जो 8 प्रतियोगिताएं हैं ये खंड स्तर पर कराई जाएंगी। बाकी हमारी टोटल 33 प्रतियोगिताएं हैं और उसमें 3 ग्रुप हैं, अंडर 14, 17 और 19, बॉयज एंड गर्ल्स, जिसमें हमारे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे।
0: उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में एथलेटिक, खो खो, कुश्ती, फुटबॉल, योगा, कबड्डी, हैंडबॉल की खंड स्तरीय प्रतियोगिता 20 जुलाई से 22 जुलाई तक होगी, जबकि जिला स्तरीय प्रतियोगिता 3 से 4 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं गुरविंदर सिंह सहोता तो प्रादेशिक खबरां सुणो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच लगभग 25,000 करोड़ रुपए तो वध दे विकास प्रोजैक्टां दा उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रख्या। श्री मोदी ने जलंधर विच 5,470 करोड़ रुपए तो वध दी लागत वाले वख-वख रेल अते सड़की बुनियादी ढांचे दे प्रोजैक्टां दा उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रख्या। श्री मोदी ने आए केंद्रीय सूचना अते प्रसारण ते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दस्सिया कि केंद्र सरकार पंजाब विच कई वड्डे रेलवे प्रोजैक्टां ते काम कर रही है।
1: पंजाब में अपार संभावना है साथियों। लुधियाना मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, जालंधर खेल उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकता है, मोहाली टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का बड़ा हब बन सकता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पंजाब के हर नागरिक तक अच्छी रेल सुविधाएं पहुंचाने के लिए और आप सबका जीवन आसान बनाने के लिए कमिटेड है।
0: अज पंजाब विच करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत 30 स्टेशनों मुड़ विकसित किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना तहत जलंधर, कैंट, श्री आनंदपुर साहिब, श्री मुक्तसर साहिब और मोहाली स्टेशनों का उद्घाटन पहला ही किया जा चुका है। 12 वंदे भारत और 4 अमृत भारत रेल सेवाएं चल रही हैं और पंजाब विच रेलवे नैटवर्क का पूरी तरह बिजलीकरण किया जा चुका है। इस मौके पंजाब बीजेपी के प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने प्रधानमंत्री का समुचे पंजाब वालों धन्यवाद करदे कहा कि व्यापारक समझौते दौरान प्रधानमंत्री वालों कणक और दुध को समझौते तो बाहर रखा गया है। श्री ढिल्लों ने कहा कि यूरोपीयन देशों हुए व्यापारक समझौते पंजाब को वड्डा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के लुधियाने की होजरी और साइकिल, जलंधर के स्पोर्ट्स के लैदर, बटाले दशीन और पंजाब के किसानों की बासमती फल और सब्जियां बिना किसी टैरिफ के 27 यूरोपीयन देशों में जा सकनगियां। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब के किसानों कणक और झोने उपर MSP देने का काम मोदी सरकार ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2027 च प्रधानमंत्री की अगवाई में पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की सरकार ही खालसा वर्गी बीजेपी सरकार बनावांगे ते पंजाब चो नशा, गैंगस्टरवाद अते बेरोजगारी नूं खत्म करके पंजाब दी आन बान ते शान बहाल करांगे। हुशियारपुर पुलिस ने अमरीका विच इक भारतीय मूल दे परिवार तो फरौती मंगण दे मामले विच दोषी पाए गए टांडा पुलिस थाने दे साबक SHO इंस्पैक्टर गुरिंदरजीत सिंह नागरा नूं गिरफ्तार कर लिया है। उस नूं मुअत्तल कर दिता गया है ते ढुकवीं भागी कारवाई शुरू कर दिती गई है। अमरीका की फैडरल जांच एजेंसी FBI ने 7 फरवरी में एक कथित अंतरराष्ट्रीय फरौती रैकेट के संबंध में नागरा का नाम लिया। DIG जलंधर रेंज अनुसार जांच दौरान काफी सबूत रिकॉर्ड आ गए ने, जो इंस्पैक्टर गुरिंदरजीत नागरा को अमरीका स्थित एक परिवार तो मंग फरौती और गैर कानूनी रिश्वत नाल जोड़ते हैं। वह अमरीका स्थित परिवार तो 16 लाख रुपए गैर कानूनी रिश्वत वजों वसूलन में शामिल पाया गया है, जिस तों बाद उसनों 17 जुलाई में

श्रोताओं, राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। वैसे उनका असली नाम जतिन खन्ना था। आराधना फिल्म से रातों रात वो देश के सबसे बड़े सितारे बन गए और फिर उसके बाद लगातार कई सुपरहिट फिल्में दी उन्होंने। उनकी लोकप्रियता का ऐसा दौर आज तक कभी किसी ने ना देखा और शायद ना ही कभी देखेंगे। उनकी प्रमुख फिल्मों में आराधना, आनंद, अमर प्रेम, कटी पतंग, सफ़र, हाथी मेरे साथी, बावर्ची, नमक हराम, दाग जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी फिल्मों के गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। आज उनकी स्मृति का दिन है, इसलिए हम आपको उन्हीं पर फिल्माए गए गीत सुनवा रहे हैं। अगला गीत सुनते हैं, इससे पहले ये एक संदेश।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: राजेश खन्ना के अभिनय की सबसे बड़ी विशेषता अगर हम कहें तो आंखों से भाव व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता थी। उनके संवाद, उनकी मुस्कान आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं और उन्होंने बेहद संवेदनशील अभिनय की झलक भी दिखलाई है। अपने भावपूर्ण अदायगी से सिनेमा प्रेमियों के दिलों में, उनकी यादों में वो हमेशा के लिए बस गए।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

राजेश खन्ना केवल एक अभिनेता नहीं, उन्हें तो एक ऐसा दौर माना जाता है जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी। आज ही के दिन वो इस दुनिया से विदा हुए, लेकिन उनकी फिल्में, उनके गीत, उनका अभिनय, उनकी सभी यादें आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित हैं।

0: श्रोताओं, 1969 से लेकर 1971 के बीच लगातार सफल फिल्मों का राजेश खन्ना का रिकॉर्ड आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में विशेष माना जाता है। कई सारे पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं, जिनमें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड है, और फिर 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा जगत के पहले सुपरस्टार, अपनी कला के माध्यम से सदा हमारे दिलो दिमाग में जिंदा रहेंगे। आज फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हमने आपको उन्हीं पर फिल्माए गए गीत सुने। हमें उम्मीद है आपको ये गीत पसंद आए होंगे।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाड़ी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोतो, अब हमारा प्रसारण हम आपके लिए विविध भारती की मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर।
2: 58 साल पहले की है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि आपने ये जो पूछा है इमोजी का, तो इमोजी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये फीलिंग बता पाते हैं, आजकल के बच्चों को बता पाते हैं, पर मुझे तो इमोजी से कोई फीलिंग नहीं आती। ये एक श्रोता की बात है। तो भाई, बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह से अपने रिस्पॉन्सेस दिए हैं और इमोजी के बारे में अपनी बात कही है। देखिए, ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, इसके बहाने कितने सारे श्रोताओं के ख्यालात हमें पता चले, और लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं ना फेसबुक पर, लगातार ऊपर स्क्रॉल होते रहते हैं। और इसी पल एक श्रोता ने ये लिखा है कि कम ही हमें इमोजी की भाषा समझ में आती है, ना समझी से खुशी की जगह गुस्से वाली इमोजी भेजने से बहुत सारे मित्र हमसे नाराज भी हो गए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कागज पर लिखी चिट्ठी तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं, पर मोबाइल तकिए के नीचे रखकर कैसे सोएं। चिट्ठी में हम अपने जज्बात उड़ेल देते थे, चिट्ठी में उसका चेहरा देखते थे, जो बात पत्रों में है वो मोबाइल के मैसेजेस में कहाँ है। कितनी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। अगर आपने अभी तक अपनी बात नहीं कही है, डिजिटल चिट्ठियां और फिजिकल चिट्ठियां यानी हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां या व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए संदेश, इन दोनों में से आप किसे प्रेफर करते हैं, और दूसरी बात, क्या इमोजी सचमुच में अपनी बात कहने का अच्छा जरिया है, ये दोनों बातें बताइएगा। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं।

भाई ये गाना खत्म हो गया और इतने सारे मैसेजेस इस बीच धड़ाधड़ आए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादातर मैसेजेस आपको पढ़ के सुनाऊं। चिट्ठियां दिल की बात शब्दों में पिरोने के लिए वक्त और सब्र मांगती हैं, जो एक

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: बच्चों को आइसक्रीम, टॉफी, बिस्किट, ओहो हो, ये कहने का मतलब है आपका, मैं समझा। इसके अलावा एक श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि आज की छोटी सी इबारत मैंने बहुत कुछ कह दिया है।

और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इमोजी डिजिटल भाव त्वरित प्रकट कर देते हैं। आजकल के लोगों के पास इतना समय कहाँ है सुनने बताने का, पर पत्र में तो पूरी बात लिखने और बताने का आनंद ही अलग था। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैसेज के बीच बीच में इमोजीज यूज करने से वो ज्यादा उपयोगी हो जाता है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि इमोजी और ऑटो टेक्स्ट दोनों खतरनाक हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती में वो हमेशा चिट्ठी लिखते हैं और उनकी शिकायत ये है कि आज तक उनकी चिट्ठी शामिल नहीं हुई है। एक श्रोता ने बहुत ही नॉस्टैल्जिक कर दिया, पहले चिट्ठियां एक तार वाले स्टैंड में घोप कर रखी जाती थी, नीचे लकड़ी का एक गोल सा टुकड़ा रहता था, सारी चिट्ठियां सुरक्षित रहती थी। आज भी हमारे पास 70 साल पुरानी चिट्ठियां संग्रहित हैं। 70 साल, क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इमोजी तो हमें शुरू से समझ नहीं आया और कई बार गलत सलत इमोजी बिछ जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, दिल की धड़कन, आत्मा की प्रतिध्वनि है। जब हम कागज पर कलम चलाते हैं तो हमारी उंगलियों के साथ साथ हमारी भावनाएं भी बहती हैं। पत्र में ठहराव होता है, गहराई होती है जो पढ़ने वाले के दिल को सीधे छूती है। और दूसरी और इमोजी आज के दौर का शॉर्टकट है। भाई, शॉर्टकट का जमाना है, ये हमारे तमाम श्रोता एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पहले पत्र लिखने के लिए फूल का फोटो बनाना पड़ता था, चिट्ठियों में परफ्यूम तक डाले जाते थे, ये इमोजी में कहां हो सकता है। चिट्ठी छूकर जो निकटता महसूस होती है वो डिजिटल संदेशों से नहीं होती। एक और श्रोता, जज्बात सिर्फ खत से महसूस होते हैं, जब खत पढ़ना शुरू करते थे तो यूं लगता था सामने वाला हमारे सामने खड़े होकर कुछ कह रहा है। कितनी प्यारी बातें। चलिए ये तमाम बातें और उसके बाद ये गाना, आप फिल्म का नाम बताइए।

अदालत फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, और एक श्रोता ने इसकी एक पंक्ति को कोट किया है, कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते। एक श्रोता जो लिखते हैं कि आज आपने यादों का पिटारा खोल रखा है जिसमें चिट्ठियों भरा प्यार है, कुछ प्रेम की बातें हैं, कुछ पुराने जज्बात हैं जो हमें सदा जवां रखते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा कि मैंने तो कभी पत्र नहीं लिखा, लेकिन मेरे बड़े पापा हैं वो वायलिन वादक हैं और उन्होंने लता मंगेशकर जी को एक पत्र लिखा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रंग बिरंगी इमोजी बहुत सुंदर दिखती हैं और वो आपके संदेशों को अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो भाई एक पहलू ये भी है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक वक्त था जब लोगों के पास समय बहुत था और भावनाएं अपरंपार थी, चिट्ठियां पोल भी खोलती हैं। अगर किसी की चिट्ठी किसी दूसरे के हाथ पड़ जाए या कोई पुरानी चिट्ठी किसी के हाथ लग जाए तो आपसी संबंध तक खराब हो सकते हैं। ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भागदौड़ आपाधापी में किसी के पास समय नहीं है कि वो बैठकर चिट्ठियां पढ़े, इसीलिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इमोजी का सहारा लिया जा रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आया एक जमाना था जब डाकिया घर पर आता था तो खुशी की लहर दौड़ जाती थी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के समय में अजीब लगेगा लेकिन मैं अभी भी दीपावली, न्यू ईयर, ईद और क्रिसमस के ग्रीटिंग कार्ड्स एनवेलप पोस्ट से स्टैंप लगाकर भेजता हूं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। कितनी प्यारी बात है, ये पुरानी परंपरा को आपने आज तक कायम रखा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और तमाम श्रोता जब सुनेंगे तो जाहिर है कि उन्हें भी इससे प्रेरणा मिलेगी। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक जमाना था जब आई लव यू कहने से पहले लोग खत लिखते थे, उस खत में जल्दीबाजी नहीं होती थी, इंतजार, अपनापन और ढेर सारे एहसास होते थे। ये हमारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तमाम कमेंट्स को शामिल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुख्य मुख्य कमेंट्स को मैं शामिल करता चला जा रहा हूं और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता जा रहा हूं। अब जरा सोचिए कि दिल की बात कहने की जो झिझक है उसे साहिर लुधियानवी ने इस गाने में किस तरह से पिरोया है। फिल्म का नाम आप बताइएगा और साथ में ये कि क्या कभी आपको भी ऐसा लगा कि आज मुझे कुछ कहना है और फिर लगा छोड़ो अब क्या कहना है, यानी आप संकोच संकोच में रह गए।

कितना प्यारा गाना है और कितना सही एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा का ये गाना जितनी बार सुनो वही किशोरदा के साथ सुधा मल्होत्रा का नाम भी लिखना चाहिए। किशोरदा और सुधा मल्होत्रा का ये गाना जितनी बार सुनो दिल नहीं भरता है। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे कुछ कहना था पर सोचते सोचते कई बरस लग गए और वो किसी और की हो गई। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि इस गाने के संगीतकार हेमंत कुमार हैं। और एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि क्या ये फिल्म कहीं देखने मिल सकती है, अब ये तो खोज कर बताना पड़ेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पढ़ाई के दौरान जब अपने किसी खास दोस्त से कुछ बात कहने का दिल में उमड़ घुमड़ होता था, भाई इन्हीं के शब्द हैं कि आज दिल की बात जरूर कहेंगे लेकिन एन वक्त पर मन कहता चलो कभी दूसरी बार, मेरे साथ ऐसा ही होता रहा है। ये एक श्रोता की बात। और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स धड़ाधड़, ये जो मोबाइल की कंप्यूटर की स्क्रीन है ये स्क्रॉल होती चली जा रही है। श्रोता लिख रहे हैं कि हमने कई लोगों के खत भी पढ़कर सुनाए और कुछ लोगों को खत भी लिखे और उन्हें समझाया भी और बातें सुनकर रोए भी वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं बचपन से विविध भारती सुनती हूँ, मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें विविध भारती की फैन हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछ ही लिया है तो आज बता देते हैं, 40 साल पहले की बात है, मेरी दुकान पोस्ट ऑफिस के सामने थी, आज भी है, ससुराल से श्रीमती जी का पत्र आता था, पोस्टमैन मुझे इशारा कर बुलाकर दे देते थे क्योंकि पिताजी जब सामने बैठे होते थे तो शर्माती थी। ठीक है भाई, ये एक बात का खुलासा हुआ। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिनकी बात, एक श्रोता ये लिखते हैं कि विविध भारती ने अभी मौका दिया है कि हम चिट्ठियों के जरिए अपनी फरमाइशें भेजें तो हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि इमोजी के जरिए हम तो अपनी फीलिंग नहीं बता पाते पर हाँ बच्चे जरूर जानते हैं कौन सी इमोजी किस तरह की है और बताते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई इमोजी भेजनी और कोई गड़बड़ इमोजी आपने भेज दी हो क्योंकि आपको उसका मतलब ही नहीं पता हो और उसके बाद किसी ने आपको आपकी गलती का एहसास दिलाया और उसके बाद आप बहुत हंसे हो? ये किस फिल्म का गाना है ये आपको बताना है। और तब तक ये जो डिजिटल संदेश है ना, इनमें कई बार ये होता है कि किसी को भेजा जाने वाला संदेश किसी और को भेज दिया जाए। इस तरह का गड़बड़ झाला भी आपने किया है तो बताइए।

0: सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के इतने सारे कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि एक बार चश्मा लगाया नहीं था तो पता नहीं चला, कुछ का कुछ इमोजी बीच गया, बाद में समझ में आया। भाई ये चश्मा लगाना कितना जरूरी है ये इस कमेंट के जरिए पता चल गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कभी कुछ का कुछ बिक जाता है तो गिल्टी फील होता है। और इसके अलावा एक और श्रोता, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात लिखी है। और तो बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि भाई आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और बहुत सारी बातें कहने का मौका आप सभी ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।

सिलसिला ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो किसी न किसी सिलसिले का हिस्सा होता है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंतिम पहर तक हर पल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रिश्तों का सिलसिला, सपनों का सिलसिला, संघर्षों का सिलसिला और सफलताओं का सिलसिला यही जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि प्रकृति भी एक अनवरत सिलसिले पर ही आधारित है। ऋतुओं का बदलना, नदियों का बहना, समय का आगे बढ़ना हमें यही सिखाता है कि रुकना जीवन का स्वभाव नहीं है। जीवन तब तक सुंदर है जब तक उसके भीतर आगे बढ़ने का सिलसिला बना रहता है।

जीवन के इस सफर में कई बार कुछ सिलसिले अचानक टूटते हुए प्रतीत होते हैं। कोई अपना दूर चला जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, या परिस्थितियां हमारी उम्मीदों के विपरीत हो जाती हैं। ऐसे क्षणों में लगता है कि सब कुछ थम गया है, लेकिन वास्तव में जीवन कभी रुकता नहीं। एक अध्याय समाप्त होता है तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है। यही समय का नियम है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई भी। टूटे हुए सिलसिलों की राख से ही नए अवसर जन्म लेते हैं। इसलिए कठिन परिस्थितियां हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि एक नए सिलसिले की शुरुआत करने के लिए आती हैं। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं, वे हर अंत में एक नई शुरुआत खोज लेते हैं।

मानव सभ्यता का इतिहास भी एक लंबे और प्रेरणादायक सिलसिले की कहानी है। पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन ज्ञान, संस्कार, संस्कृति और अनुभवों का प्रवाह लगातार आगे बढ़ता रहा। आज हम जो कुछ हैं, वो उन अनगिनत लोगों के प्रयासों का परिणाम है जिन्होंने अपने समय में कुछ अच्छा करने का सिलसिला जारी रखा। यही कारण है कि हमें भी अपने कर्मों, अपने मूल्यों और अपने सकारात्मक विचारों का सिलसिला बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे प्रयास भविष्य की किसी बड़ी कहानी का आधार बन सकते हैं। अंततः जीवन का सार यही है कि हम उम्मीद, प्रेम और मानवता का सिलसिला कभी टूटने न दें। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, तब तक जीवन में अर्थ, ऊर्जा और आनंद बना रहेगा।

0: बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
1: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
2: होठों पे सच्चाई रहती है
0: तो सुनना ना भूलिए 21 और 22 जुलाई को शाम 4 बजे। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सुनिए समाचार दिल्ली से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष

0: अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
1: Congratulations in space for facilitating
2: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण

0: एक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
1: इन दी हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
2: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत के नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
4: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
2: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
4: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
2: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
4: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक

0: की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ है अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई

0: क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: पर आप विविध भारती के संग हैं। सदाबहार नगमे।

अमराही फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। हंसरे जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। आज है जानी मानी गायिका मुबारक बेगम की याद का दिन।

मुबारक बेगम कृष्णा बोस सुमन कल्याणपुर की आवाजों में जुआरी फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी की बोल थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: देवदास फिल्म का गीत मुबारक बेगम की आवाज, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: मुझे ईद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज जो पहला गाना है वो आप सभी की फरमाइश पर वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे, छबड़ा जिला 12 राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, राजस्थान जोधपुर से अशोक प्रेमलता और सुमित बाणिया, और ये चिट्ठी है पंचगवहाण उबारखेड़ से साहिबराव वेड़कर, अमोल मिस्त्री और आनंद निहां। इसके अलावा उल्हासनगर से पुरुषोत्तम और ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर, और पतरोड़ा गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर और डॉक्टर सुनील जनागल। आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम की पहली पेशकश है मुकेश की आवाज में पूर्णिमा फिल्म का गाना गुलजार के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ज्वेल थीफ से है, लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत और आप सभी की फरमाइश है। श्री गंगानगर से निकी राम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल और धनराज बांसीवाल, हावड़ा नाजिरगंज नेपाली पारा से हमारे कुछ श्रोता हैं, दीपक, स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दिर्शा और रितेश लिंबू और इनका पूरा परिवार ये हावड़ा से। इसके अलावा घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, वंदना नगर इंदौर से ललिता नारायण खर्चे, संजना परी खर्चे, गणेश खर्चे, दीपिका, स्वाति और प्रयाग चौधरी, और ये फरमाइश है रेखा, पूजा, नंदिनी, बबीता, शोभा रघुवंशी, स्वाति, इन सब की इंदौर से, राजस्थान जोधपुर से इन श्रोताओं का नाम पहले हो चुका है। तो सुनिए ज्वेल की फिल्म का ही गाना।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में श्रोता हमें लिखते हैं तमाम देश भर से चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों के जरिए हम ये जान पाते हैं कि कहां कहां श्रोता हमें सुन रहे हैं और कौन कौन से गानों की फरमाइश करना चाहते हैं। ये पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता की चिट्ठी, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज, पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्रकांत, प्रीति और छाया, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी। और इसके अलावा ये फरमाइश जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अशोक भूतेकर, गणेश और कार्तिक भूतेकर। बहुत ही सुंदर लेखनी में श्रोताओं की ये चिट्ठियां। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, शर्मीली फिल्म का गीत नीरज की बोल।

ईद मुजाहिद कार्यक्रम की अगली पेशकश जो है उसकी फरमाइश आप सभी ने भेजी है बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, सलोजी महाजन और चीकू। ये चिट्ठी आई है खोखरिया बनाड रोड सूर्य नगरी जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह की और राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम, बिट्टू, मट्टू, सारिका, बनीता, मनोज जैन और समता जैन ने हमें लुधियाना के मोहल्लापुर दंबा मंडी से चिट्ठी लिखी है। वारंगा फाटा से वैष्णवी मोरे, अश्विन मोरे, कुंडलीक और पांडुरंग मोरे की चिट्ठी है और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की चिट्ठी। सितमगर फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और कीजिएगा सितमगर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल आरडी बर्मन की तर्ज।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना जो धरती फिल्म से है, फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सुकोडा रोडा गोला से गजानन कुम्हार, पद्मावती, विशाल, ज्योति और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा बड़वाहा से अयांश रावल, पुष्पेंद्र और इंदिरा रावल, चांदूर बिस्वा से राम भाऊ, लक्ष्मण भाऊ, भारत, शत्रुघ्न नारायण, पंच गवहाण तेलहारा से साहेब राव, अमोल खालिक और इनके साथी, शेगांव से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद रिजवान। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें।

0: सुविधा है।
1: इसी के साथ अब आज का मनचाही गीत कार्यक्रम खत्म होता है।
2: मनचाही गीत।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: हेलो हेलो नानी।
1: हाँ गुड़िया।
0: अरे हाँ हाँ मैं गुड़िया ही बोल रही हूँ, मुझे पता था आपका फोन आएगा।
1: हाँ अच्छा अच्छा जल्दी बता वो आया कि नहीं।
0: अरे रुकिए मैं खिड़की के पास ही जा रही हूँ, खिड़की तो खोलने दीजिए। हाँ बोलिए नानी, आपकी टाइम की सेंस बड़ी परफेक्ट है।
1: नानी किसकी हूँ,
0: आपका फोन आया, मैंने खिड़की खोली और मैं नीचे देख रही हूँ कि भूरे भी अपने ठिकाने पहुँच गया है।
1: अरे गुड़िया तो खिड़की पर आ भी गई फिर भी सामने वाले फ्लाईओवर का शोर नहीं सुनाई दे रहा।
0: ओ फो नानी आप भूल गई लगता है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरा सन्नाटा पसरा है, शोर कैसे आएगा।
1: अरे बेटा मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भूरे का डिनर हुआ कि नहीं।
0: आप भी ना नानी, डिनर तो हम करेंगे थोड़ी देर में। उफ ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, भूरे भी तो डिनर ही करेगा ना रात में, अब भले दूध भात खाए या रोटी।
1: आज क्या मिल रहा है उसे, क्या लाया बेरा, दूध भात की ब्रेड।
0: आप उसे बेरा क्यों कह रही है, अरे वो तो उजला फरिश्ता है, रोज शाम अपने साथ भूरे के लिए पानी और खाना लाता है।
1: देखो गुड़िया खाना जो बनाए वो खानसामा और जो खाना परोसे वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता तू उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है।
0: अरे नानी वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
1: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी है।
0: हाँ और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है उसका मन भी उजला है, तभी तो हर रोज भूरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी बारिश हो तो भी आता है, और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा मेरी बातों की दादी, अब ये बता आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता।
0: अभी तक तो नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
2: अरे गुड़िया बेटा गुड़िया आज बेटा तुम लोग सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गया, खाना टाइम हो गया।
0: ओके ओके मम्मा। अच्छा नानी नीचे भूरा खाने की वेट कर रहा है और यहाँ हमारे डिनर की भी कॉल आ गई, तो आपको बाकी रिपोर्टिंग में खाना खाने के बाद दूंगी। ओके बाय
1: बाय बेटा।
2: आ जाओ सब लोग आगे सब लोग।
0: वाओ रायता माय फेवरेट। मम्मी और ये इतने बड़े डोंगे में आपने क्या ढक के रखा है। मैं देख लूं खोल के।
2: हाँ हाँ देखो देखो।
0: उफ, ये क्या, ये तो चावल दिख रहे हैं
2: जी,
0: और कैरेट कैप्सिकम भी, ओ नो बीट रूट, और वो भी इतने चिपके चिपके से। मम्मी ये बिरयानी है या खिचड़ी, वो भी बीट रूट वाली, या कौन खाएगा।
2: गुड़िया लॉकडाउन में खाना मिल रहा है शुक्र मनाओ।
3: वाह ये चावल तो मेरे हिसाब से बने हैं, चबाने की जरूरत नहीं है।
4: लाइए भाई हम भी तो चखले थोड़ा सा।
0: मम्मी आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी।
2: जिसने बनाया है ना उन्हीं से पूछो तुम।
0: ओ नो दैट मींस आज कुकिंग फिर पापा ने की है।
2: यस
3: जिसे जो आता है वही तो करेगा, तेरे बाप से झाड़ू पोछा नहीं लगता, न ये कपड़े धो पाता है न बर्तन, अब तेरी माँ भला कितना खटेगी। बेचारा खाना बना देता है, वरना मर्दों को सिर्फ हुक्म देने की आदत होती है। हाँ
4: अम्मा एक तुम ही हो मेरी पार्टी में बस। हाँ। ये गुड़िया तो विरोधी पार्टी।

0: में चली गई लगती है। इससे तो सिर्फ गलतियां निकालना आता है।
1: क्या पापा,
2: हम बस करिए ना गुड़िया बेटा, लाओ मैं तुम्हारे लिए पराठा बना लेती हूँ। बेटा
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, विरोधियों और असंतुष्टों को अपनी तरफ करने का अच्छा पैतरा है।
1: जी हाँ वो तो है।
0: खाओ खाओ पराठे खाओ, वजन बढ़ाओ, हमें क्या है, बाद में मत कहने की सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा है।
1: तो शुरू बस करिए, है नहीं तो एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता।
0: अच्छा सच में?
1: हाँ
0: तो एक हमारे लिए भी बना दूँ।
1: अम्मा अम्मा देख लीजिए, अब आप देख रही है ना।
2: हाँ।
1: अपने लाडले से अपना खुद का बनाया खाया नहीं जा रहा है खाना, और आप उन्हीं की साइड ले रही
3: हैं। अरे बहू, हम सब एक ही साइड में है, तू फिकर मत कर। अरे गुड़िया, ये गुड़िया तू ये बता, तेरी नानी क्या कह रही थी रे?
4: अरे दादी पता है उनको भूरे की इतनी फिकर होती है, इतनी फिकर होती है ना कि रोज शाम को जब तक उसके खाने की पूरी रिपोर्ट नहीं ले लेती उन्हें चैन ही नहीं पड़ता।
3: अच्छा तो तू उन्हें पूरी खबर देती है?
4: और नहीं तो क्या, भूरी की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
3: अच्छा कैसे, लेकिन
4: आपको पता तो है सारी कहानी नानी।
3: अरे पर मैं भूल जाती हूँ ना रे, तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना, वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
4: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
3: खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की से कैसे बुलाया?
4: ओहो दादी आपको कहानी सुननी है ना।
3: हाँ हाँ सुना सुना सुना।
4: हाँ तो खिड़की के नीचे, ठीक नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना,
3: हाँ
4: वहाँ वो रोज शाम को आता है। दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, रात को कहाँ सोता है ये भी नहीं पता।
3: अरे तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की?
4: ओहो दादी लॉकडाउन में नीचे उतरना अलाउड नहीं है, तो फाइंड आउट कैसे करूंगी, हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
3: अरे इसमें खुश होने की क्या बात है।
2: अम्मा अम्मा आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
3: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
4: हाँ तो शाम को जब डॉगी फ्लाई ओवर पर पहुंच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन आता है, वही आपका उजला फरिश्ता।
3: हाँ
4: और भूरे को कुछ खाने को देता है
3: रोज,
4: और नहीं तो क्या।
3: अच्छा
4: हम तो डेली देखते हैं और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
0: अम्मा इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था, अब देखा क्या था, मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी अम्मा।
4: हाँ रहता हमसे दूर है लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
3: हाँ हाँ कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं।
0: गुड़िया याद करो यार, वो रात कैसी थी है?
2: हाँ।
0: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आसपास वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता, खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए थे।
2: हाँ, बस इसी समय की तो बात है।
0: दहशत फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था कि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।
2: हाँ ये बात तो है, लेकिन कितने डरावने दिन थे, दुकान बंद, दफ्तर बंद, लोगों का आना जाना बंद, और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा किचन कैसे चलेगा। और हाँ देखिए आप भी तो जानते ही हैं, हम लोग कभी राशन तो जमा करके हमने रखा ही नहीं था, तो चिंता लगी।
4: ओ मम्मा भूरे की बात बताइए ना।
2: हाँ हाँ अब खिड़की से देखते देखते अम्मा कई घंटे बीत गए। एक तो ऐसी ये सुनसान जगह, पैदल कोई आता ही जाता नहीं, और दोनों तरफ इतने बड़े दानवादार टावर, और बीच में इतना चौड़ा 4-लेन वाला फ्लाईओवर, इतने बड़े महानगर के इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ के टावरों में अम्मा 1000-2000 फ्लैट तो होंगे, पर इनके ठीक नाक के नीचे सूखी नदी जैसा फ्लाईओवर, जहां ना आदम चाट। और पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा पिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया, और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहां जाए, कैसे करे और कैसे बस्ती में पहुंचे।
3: ए बहू तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
2: हाँ अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं, आप जरा सोचिए सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर्वत खड़े हैं धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है, इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती, बस काम से काम रखते हैं इसमें रहने वाले अम्मा।

0: बाबू, हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
1: हाँ तो अम्मा, हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो में सिमटे रहते हैं।
0: हाँ
1: पर उस दिन, हाँ अम्मा उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
2: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो, पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी तो घंटों देखते रह गए थे।
1: हाँ वो तो है, लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारें, बचाएं और कैसे लेके आए। याद है ना, यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
2: हाँ।
1: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता, इतनी दूर था।
2: तब अम्मा हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया।
0: क्या, घर लाने का?
2: अरे नहीं अम्मा, घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया, क्यों याद है ना तुम्हें?
1: हाँ,
2: गुड़िया उस रात क्या हुआ था याद है? क्या है बेटा, क्या हो गया?
3: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए। तो
2: अरे क्या है बताओ।
3: पापा, पापा देखिए ना, वो नीचे बेचारा कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। आई थिंक ही इज लॉस्ट।
2: हाँ भूखा और परेशान है लगता, कहीं तो भटक के आ गया।
3: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, वी मस्ट डू समथिंग।
2: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई?
3: पापा क्या हम उस बेचारे पपी को कुछ खाने को दे आए, प्लीज पापा।
2: इस समय लॉकडाउन में?
3: प्लीज पापा।
2: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं जा नहीं सकते।
3: अरे पापा ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
2: देखते हैं, भूखा तो है, सोचने दो। अच्छा एक काम करते हैं, मैं चला जाता हूँ, कुछ दे आऊंगा, ठीक है? और तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
1: हाँ हाँ मैं बिल्कुल देती हूँ। मैं ऐसा करते हैं कि पानी भी दे ले जाइए और ये बिस्किट भी ले जाइए, है ना?
2: हाँ।
1: और लेकिन रुके, ऐसा करती हूँ मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट। लीजिए ये सामान, हमने सब थैले में रख दिया, ठीक है? ये देखिए पानी है ना, और रोटी, दोनों चीजें हैं, और ये सामान रख दिया है, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा। और मास्क कहाँ है आपका?
2: अरे हाँ लगा लिया है।
1: सैनिटाइजर रखिए भाई।
2: अरे रखा है भाई।
3: अरे रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से लेकर आना है।
1: तुम वहाँ क्या करोगे?
2: अरे आगे रही है तो जाने दो ना।
1: कमाल है आप तो।
2: तुम डरोगी तो नहीं ना?
3: नहीं नहीं पापा बिल्कुल नहीं।
2: चलो चलो चलो,
1: मतलब डरोगी नहीं है क्या है
3: मम्मा? प्लीज
2: चलो चलो चलो, लिफ्ट बुलाओ और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
3: हाँ हाँ पापा आइए।
1: अम्मा ये लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए सोने के पहले वाली, और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
0: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है, बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी बहू?
1: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा आप दूध पी के सो जाइए
0: इतनी रात को। लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
1: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे।
0: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।
1: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुंचे कि नहीं वो लोग। तो पेड़ बीच में आ रहा है, लगता है अभी पहुंचे नहीं। क्या करूं, बड़ी चिंता। मैं सोचती फोन कर लेती हूँ। हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया।
3: हेलो
1: हाँ मम्मा, तुम लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं।
3: अरे मम्मा उड़कर थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। चा? और पता है मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
1: क्यों बोला?
3: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है।
1: हवा?
3: और सड़क पर बहुत सारे डॉग्स हैं मम्मी, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए, आप खिड़की पर ही है ना?
1: हाँ हाँ मैं यही हूँ।
3: हाँ तो हम पहुंचेंगे तो आपको दिखी जाएंगे, आप बस वेट करिए।
1: अच्छा
0: बहू बहू आ गए वो लोग क्या?
1: अरे अम्मा आप यहाँ आ गई, अम्मा आप फिक्र क्यों कर रही हैं, वो लोग आ जाएंगे, आप आराम कीजिए।
0: अरे आराम।

0: हम कहां से होगा बहू, इस कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। इतना डर तो आजादी मिलने के दिनों में भी नहीं लगा था।
1: आजादी? अम्मा आजादी मिलने पर डर क्यों भला लगा? और मतलब आप तो उधर से आई भी नहीं थी फिर।
0: आजादी मिलने का नहीं, जो मारकाट मची थी उस वक्त उसका डर। हम कहीं से उजड़ कर नहीं आए थे, पर आतंक ऐसा था कि अब हम क्या कहें।
1: अम्मा आपकी उम्र क्या थी उस समय?
0: अरे वही 5-6 साल की रही होंगी। हम बच्चों को घर में बंद कर दिया गया था, सबको डर था कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं। पर आज का वक्त ये तो बहुत डरावना है, किसी को हम छू नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सैर करने तक हम नहीं जा सकते।
1: अरे अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या, आप तो पहले भी कहीं सैर वैर करने नहीं जाती थी भाई।
0: पर डर का साया तो 2400 घंटे है ना, और ऊपर से ये मुआ टीवी मरीजों की गिनती, मरने वालों की गिनती ऐसे बताता रहता है जैसे मौत का खेल चल रहा हो। इतने बीमार पड़ गए, इतने मारे गए।
1: अरे अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा आप घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रहिए। हाँ। मैं खिड़की से देखती हूँ कि वो लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे, है ना?
0: हाँ हाँ देख देख,
1: ठीक है,
0: आ जाए तो जरा मुझे बता देना।
1: उठाती हूँ। गुड़िया गुड़िया पहुंच गए तुम लोग? हाँ हाँ मैं खिड़की की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ लो मैं आगे खिड़की पर, अब रुको। हेलो, अरे फोन मत बंद करना। हाँ हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। अरे पर आवाज तो बेटा फोन पे ही सुनाई देगी ना। अरे अम्मा आप, हाँ लो दादी भी तेरी यहीं आ गई। अम्मा देख रही हैं, ये लोग नीचे ही खड़े हैं, पहुंच गए उस बेजुबान प्राणी के पास।
0: हाँ बहू एक मिनट, मुझे भी तो आगे आने देना, खिड़की के पास आने दे जरा।
1: हाँ अम्मा ये हम कुर्सी यहाँ रख देते हैं, आप यहीं बैठिए, आइए आइए बैठिए। मैं फोन को भी स्पीकर पर ऑन कर देती हूँ ताकि अम्मा आप लोग को भी ना इन लोगों की आवाज सुनाई दे, सब बातें पता चल जाए। गुड़िया गुड़िया सुन, पहले उसे पानी पिलाओ।
2: हाँ मम्मा। मम्मा आप देख रहे हो?
1: हाँ, हाँ?
2: जो कटोरा लाए थे ना, मैंने उसमें पानी डाल दिया। मम्मी देखो ना कैसे पूंछ हिला रहा है और डर भी रहा है। आ गया आ गया, पानी के कटोरे के पास आ गया।
0: अरे लग रहा है रोटी भी खिला रहे हैं।
1: अब पर अम्मा रोटी सूंघ के तो पीछे हट गया।
0: अरे डर रहा होगा ना शायद।
2: मम्मा इसे ना बहुत प्यास लगी है, आप देख रहे हो कितने तेज तेज पानी पी रही है।
1: पता नहीं कब से प्यासा था, और गुड़िया मेरा तो मन कर रहा है कि उसे पुचकारूं, प्यार करूं, छोना सा तो है।
3: पुचकारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है मैडम। तुम लोग आसमान में टंगे हो?
2: आसमान नहीं स्वर्ग में बैठे हैं।
0: हाँ बड़ा स्वर्ग स्वर्ग में बैठे हैं। अरे कैदी है, कैदी माचिस की डिबिया में। हाँ
3: खुद को खुशकिस्मत समझो अम्मा, लाखों करोड़ों में मिलती है ये माचिस की डिबिया।
1: भाई कमाल है, इतनी दूर खड़े हैं फिर भी चैन नहीं है, बस बहस करा लो इनसे जब चाहो तब।
3: बहस नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
1: अच्छा पहले आप उस जो बेजुबान प्राणी के लिए गए ना उसकी सेवा करिए, और जरा फिर ये बताइए इतनी देर कहाँ भटक रहे थे आप दोनों? 15 मिनट का रास्ता पूरे 2 घंटे लगाए आप लोगों ने।
3: जमीन आसमान का फर्क यही होता है मैडम, समझे आप? मतलब हम समझा दें आपको, जमीन आसमान का मतलब यहां जहां हम खड़े हैं वहां पहुंचने के 2 बड़े मोड़ हैं
1: जी।
3: जब हम चलने लगे तो पहले सुनसान रास्ता आया, डरावना, अंधेरा, तेज हवा चल रही थी, कागजों प्लास्टिक और तमाम चीजों का कचरा उड़ने लगा, गलियों से कुत्ते निकलकर भौंकने लगे, छीना झपटी करने लगे, अजीब सा अंधड़ चलने लगा, कूड़े कचरे की बारिश होने लगी, रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था।
1: क्या कह रहे हैं आप, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न हवा न बारिश।
3: कह तो रहा हूं जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं।
1: अरे क्या ऐसा है बोले जा रहे हैं, आप गुड़िया को फोन दीजिए।
0: अरे बहू क्यों गुस्सा कर रही हो?
1: अरे अम्मा आप रुकिए, गुड़िया गुड़िया ये पापा तुम्हारे क्या कहे जा रहे हैं?
2: हाँ मम्मा सच में बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। हाँ? सुनिए तो, फिर पहला मोड़ आया तो वहाँ बहुत लोग थे, लोग क्या थे, प्रोसेशन जैसा ही था, एक जुलूस, लोग बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सिर पर गठरियां उठाकर चले जा रहे थे पैदल।

0: साइकिलों पे, साइकिल रिक्शा पे, किसी भी तरह बस चले जा रहे थे। रदर देवर रनिंग, यू नो, रनिंग अवे फ्रॉम सिटीज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट मामा, टू देयर नेटिव प्लेसेस। मामा, देवर एस्केपिंग, माइग्रेटिंग।
1: अरे सब तो टीवी पर आता है, प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं और क्या।
0: हाँ, टीवी जैसा ही, पर एकदम रियल, लाइव, जिंदा। एक बच्चा सिर पर बैग उठाकर चला जा रहा था।
1: अच्छा,
0: मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, भाग गया। पता है मम्मी, एक अंकल थे बूढ़े से, नंगे पैर मम्मा।
1: अच्छा,
0: और उनके पैरों में चोट लगी थी। पता है मम्मा कितना ब्लड आ रहा था, और पापा को इतना वरिड मैंने कभी नहीं देखा मम्मी।
1: अच्छा,
0: जितने वो उस सीन को देखकर हुए। एंड यू नो
1: क्या,
0: यू नो पापा ने क्या किया?
1: क्या?
0: पापा ने अपने स्लीपर्स उन अंकल को दे दिए मम्मा।
1: अच्छा,
0: अब देख सकते हो पापा उसके बाद नंगे पैर चल रहे हैं।
1: हैं? हाँ हाँ, हरम सच में नंगे पैर ही हैं। अरे अम्मा, अम्मा देखिए तो जरा सा, इन्होंने तो
2: हुआ?
1: अरे अम्मा ये देखिए तो, इन्होंने स्लीपर अपनी दे दी किसी को।
2: अरे
1: हाँ, इनके पैर दुख रहे होंगे गुड़िया।
2: कोई बात नहीं, कोई बात
1: अरे
2: नहीं।
1: गुड़िया गुड़िया पापा को फोन दो। हेलो हेलो।
3: हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ?
1: अरे आप नंगे पैर हैं, सड़क चुभ रही होगी आपको।
3: नहीं नहीं, आज तो जमीन को फील कर पा रहा हूँ। जानती हो, जिंदगी को इस तरह कभी नहीं देखा। जिंदा बचा रहने की इच्छा का परम रूप, चरम रूप, जिजीविषा शायद इसी को कहते होंगे। ये लोग इस अंधेरे वक्त में दिखे, इन्हें एहसास हो गया कि इन्हें कोई नहीं बचाएगा, न साहूकार, न सेठ, न सरकार, न अमीर, न गरीब। खुद ही खुद को बचाना होगा, अपने ही पैरों पर भरोसा करना होगा। ये लोग न जाने कब से चल रहे हैं, और इन लोगों को न जाने कब तक चलते रहना है।
1: ये कौन लोग हैं?
3: यही तो विडंबना है, ये लोग हमारे ही शहरों में थे, हमारे शहर इनके ही बनाए हुए थे, ये शहर इनके चलाए ही चल रहे थे, पर ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे लिए इनका अस्तित्व ही नहीं था। ये हमारी ही तरह हाड़ मांस के जिंदा इंसान है।
1: आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगता है आपने कोई सपना देख लिया है, और वो भी जाते हुए।
3: ये हमारे जैसे लोगों के लिए सपना ही है, कल्पना से भी परे, पर हकीकत। जमीन पर उतर कर ही इसे जाना जा सकता है। अरे जानती हो, हमारा डर तो दाल रोटी के साथ सब्जी न मिलने का डर है। काम वाली नहीं आएगी तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा, इसका डर है। पर पता है
1: क्या?
3: इनका डर भूखो मर जाने का डर है। इन्हें यही डर है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। इन लोगों ने इसे भोगा है, मैंने नहीं भोगा, सिर्फ करीब से देखा है, और तहल गया हूं, अंदर तक तहल गया हूं।
0: सच पापा, बड़ी वियर रात थी वो। ओ माय गॉड, आज भी याद करके गूज़बम्स हो जाते हैं।
4: क्या गूज़ हो जाते हैं? क्या बक रही है?
3: अरे अम्मा, रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में गूज़बम्प कहते हैं। अरे अम्मा, तुम इसे कभी कभी अपनी भाषा भी समझाया करो यार।
4: हाँ हाँ
0: पापा, लेकिन उस रात पप्पी को जो पानी पिलाने का एक्सपीरियंस था ना, वो मेरी लाइफ का दी बेस्ट एक्सपीरियंस था।
4: हाँ, तभी तो तुमने ढिंढोरा पीट दिया, हाय हाय अनाथ कुत्ता है, मर जाएगा।
0: अरे नहीं दादी, मैंने तो बस सोशल मीडिया पर शेयर किया था, मुझे डर लग रहा था कि हम इतनी दूर रोज रोज थोड़ी ना जाएंगे उसे खाना खिलाने।
4: हाँ, तो इसीलिए तो आ गया ना तुम्हारी मदद करने के लिए वो उजला फरिश्ता।
0: सच्ची, और तब से देखो वो पपी, अरे जिसे आप भूरे कहती हैं,
4: हाँ,
0: दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन रोज शाम को फ्लाईओवर पर आ जाता है, ठीक हमारी खिड़की के नीचे।
4: हाँ।
0: और आपको पता है एक लेन जो खाली रहती है ना, वहीं पर, और वो पर्सन वहीं आकर जॉगिंग करता है। पहले भूरे को खाना खिलाता है, फिर अपना मोबाइल चेक करता है, फिर 10 चक्कर यहाँ से वहाँ लगाता है। और पता है ये भूरे लाल उसके आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं। पता है दादी,

0: बारिश हो जाए ना तो भी इन दोनों की रूटीन नहीं टूटती।
1: अरे अम्मा, जब से ये भूरे को इन्होंने क्या देख लिया, उसकी सेवा क्या करने लगी, बस सोते जागते बस भूरे की कहानी, भूरे की कहानी दादी को सुनाएंगी फिर नानी को सुनाएंगी। भाई
2: अरे तुमको याद नहीं उस दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद जब तुम वापस आई तो तुम्हारे साथ सहेलियां भी आई थी तुम्हारी।
1: बिल्कुल,
2: उनको उनको दिखाने बैठ गई, उनको बताने लगी, उनको ले गई अपने साथ कि चलो हमारे साथ हमारे भूरे को देखो।
1: और वो तो उसके संग संग उजले फरिश्ते को भी देखो। ठीक है, बेजुबान प्राणी की सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल सही बात है, प्राणी की सेवा करना परम धर्म है। और ये जो इस समय कोरोना का समय चल रहा है, इसमें ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बेजुबान जानवर आखिर हमारे ही तो भरोसे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी
1: है। बस बस बस शुरू हो गया, ये इनको मौका मिला गुड़िया और तुमने मौका दिया और पापा शुरू हो गए। अच्छा सब लोग बस करो और गुड़िया चलो आओ, सब पराठे खा लो, आ जाओ आ जाओ।
0: क्या मम्मी पापा आप भी ना, अरे भूरे तो हमारा हीरो है, आप लोग भी ना। हाँ ओ नो, देखो ना बातों में तो मैं भूल ही गई, आज भी आ गया होगा अब तक और नानी भी मेरा वेट कर रही होंगी। अरे मुझे उन्हें रिपोर्ट देनी है ना भाई, मैं तो जा रही हूँ खिड़की पर। हेलो हेलो नानी।
3: गुड़िया,
0: अरे आप जाग रही हैं?
3: हाँ बेटा, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ।
0: इज इट, क्या बात है,
3: जल्दी जल्दी बता क्या वो आया, क्या क्या कर रहा?
0: हाँ हाँ नानी, अब सुनिए तो इत्मीनान से, मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग दूंगी, पूरी गुड़िया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खिड़की, आप बस सुनते जाइए। हाँ तो नानी, मैं देख रही हूँ कि उजला फरिश्ता आ चुका है, उसने अपने बैग से कुछ निकाला, अब वो रोटी है या ब्रेड ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, लेकिन भूरे लाल भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं इतना दिख रहा है। अब खाना खत्म भूरे लाल का और भूरे की मस्ती शुरू। उजला फरिश्ता अब तेजी से सैर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और ये भूरे लाल कभी उसके आगे कभी उसके पीछे उछल कूद कर रहे हैं। नानी आप बस सुनती चलिए। और ये मैं क्या देख रही हूँ, ओहो भूरे ने उछल कर फरिश्ते की पैंट पकड़ ली और पैंट छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उजला फरिश्ता। ओह मैं कह सकती हूँ नानी की भूरे बड़ा खुश है, और नानी भूरा खुश है तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो नानी आप खुश हैं, है कि नहीं?
3: बिल्कुल खुश।
0: तो नानी आज की रिपोर्टिंग के बाद अब तो आपको नींद आएगी ना?
3: हाँ बेटा जरूर आएगी।
0: तो ठीक है, आज आप सो जाइए आराम से इत्मीनान से, मैं कल शाम को आपको फिर कॉल करके रिपोर्ट करूंगी। ओके गुड नाइट नानी, बाय बाय।
2: गुड नाइट गुड़िया, बंद करो बेटा फोन अपना, इधर आओ, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तुम्हें खिचड़ी टाइप बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी ना? तो जानती हूँ मैंने क्या किया।
0: क्या बताया पापा?
2: दूध लाया। दूध तो मिल रहा है लॉकडाउन में,
4: लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता।
2: मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने उसका छेना बनाया।
0: क्या बात है,
2: छेने के बाद उसके संदेश बनाए।
0: इज इट
2: बंगाली संदेश?
0: ओ वाओ पापा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
2: मीठे मीठे संदेश खाओ, और हाँ अपनी मम्मी को भी खिला देना, हमेशा कहती ना कि यही खाते रहते हैं हमेशा।
0: वाओ यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट।

अभी आप सुन रहे औरधे अनूप सेठी का लिखा नाटक जमीन आसमान। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार था: माँ रेणु चतुर्वेदी, गुड़िया आकांक्षा सिंह, दादी ममता सिंह, नानी अनुश्री पाठक और पापा अमरकांत दुबे। संगीत संयोजन और तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी।

0: कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो

0: टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट दे रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, आपने थिएटर किया, दूरदर्शन के दुनिया भर के सीरियल्स बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में बनाई, आपने फिल्में भी बनाई। फिल्में बनाने का विचार कैसे आया?
3: देखिए, क्या है, कला एक नदी है
2: जी,
3: तो नदी जब अपने स्रोत से शुरू होती तो बहुत छोटी होती है, फिर आते आते धीरे धीरे धीरे और उसका जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वो समुद्र होता है। तो फिल्म जो है ना, समुद्र है
2: जी,
3: तो वहां आना ही था। मुश्किल होता है क्योंकि फिल्म में बहुत पैसे की जरूरत होती है, फिल्म का जो कैनवास है हर तरह से बड़ा होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिल गया फिल्म बनाने का। और उससे ज्यादा सौभाग्यशाली ये रही कि मेरी तरह का सिनेमा जो ऑफ बीट है, एक नई तरह का, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट मेरी पहली फिल्म थी, उसमें मैंने शारदा वाला कैरेक्टर तो लिया ही है, जो वो एक गांव की लड़की है जो बिक रही है, और उसके साथ मैंने एक कैरेक्टर लिया है जो पास्ट की लड़की है, बुद्ध पीरियड की लड़की है, उससे पहले की लड़की है, जो तब की है जब भी बिकती थी महिलाएं, स्त्री। तो वो उसकी आत्मा इससे मिलती है, पास्ट और प्रेजेंट को मैंने दोनों
2: को मिलाया है।
3: और वो कहती है मैं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक तू मुक्त नहीं होगी, तू अपनी मुक्ति देख। तो वो उसको वो प्रेरणा देती रहती है। तो इस तरह का सिनेमा बनाने का सौभाग्य मिला मुझे और काफी इंटरनेशनल इसको अप्रिसिएशन भी मिला फिल्म को,
2: काफी चर्चा हुई इन फिल्मों की। और इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि मिस्टर कबाड़ी और द वीकली बाजार जैसी ऑफ बीट फिल्मों का आपने निर्देशन किया, तो क्या अनुभव रही है फिल्में बनाने के?
3: हार्ट द वीकली बाजार का तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सारे कलाकार बहुत मन से काम कर रहे थे। दिव्या दत्ता थी, अर्चना पूरन सिंह थी, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, ये सब लोग थे, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, अशोक चक्रधर ने गीत लिखे थे, अली गनी जो है पद्मश्री है अभी, उन्होंने संगीत दिया था, तो वो तो बहुत ही अच्छा रहा। मिस्टर कबाड़ी जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी
2: जी।
3: लेकिन एक गरीब आदमी जब अमीर हो जाता है तो उसकी क्या त्रासदी होती है। गरीब जब तक रहता है तो कोई दुख नहीं है, अमीर होते ही सारे दुख शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उन अमीरों में शामिल देखना चाहता है। जो अमीर है वो अपनी क्लास कॉन्शियस है, इलीट क्लास वालों में रहना चाहता है, वो क्लब में जाना चाहता है, और वो लोग उसको मुंह नहीं लगाते, पैसा है। लेकिन उसमें भी ये कहने की कोशिश की है कि मतलब आप जिस क्लास से हैं, पैसा आ जाए तो उसको सुविधा के लिए होता है पैसा, और उससे कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं वहां बहुत खुश हैं।
2: सबसे बड़ा संदेश,
3: सबसे बड़ा जी।
2: तो ये बड़ा अच्छा आपने कंट्रास्ट इस तरह का उस फिल्म में लिया था। तो मुख्यधारा की मसाला फिल्मों से अलग ही फिल्में थी, दशकों तक कहां तक पहुंची होंगी ये फिल्में, आप क्या सोचती एक निर्देशक होने के नाते?
3: अब तो ओटीटी आ गया है और ओटीटी पे है तो काफी लोगों ने देखा उसको, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत बड़े वाले स्टार नहीं थे, इसलिए जब सिनेमा में आई तो उतना नहीं हो पाया, छोटे बजट की फिल्म थी। आजकल क्या है कि

0: आपको फिल्म के प्रमोशन के लिए 10-15 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है, छोटी से छोटी फिल्म का, तब लोगों तक पहुंचता है। हमारे पास तो उतना था नहीं, प्रोड्यूसर के पास उतना नहीं था। पहली फिल्म NFDC की थी, उनके पास भी उतना तो प्रमोशन के लिए नहीं था। लेकिन अब जब OTT पे आई है तो अब वो बहुत लाखों लोगों ने देखी है,
1: जन जन तक
0: पहुंची, जन जन तक पहुंची है OTT की मेहरबानी से।
1: लेकिन इसमें कलाकार तो बहुत अच्छे थे और
0: नहीं, कलाकार अच्छे हो, फिल्म भी अच्छी हो, लेकिन लोगों को पता कैसे चले कि एक अच्छी फिल्म आ रही है? उसके लिए आपको प्रमोशन की जरूरत होती है। प्रमोशन के लिए पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं।
1: एक मार्केटिंग बहुत
0: मार्केटिंग
1: जरूरी है
0: के लिए, जी जी।
1: तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सीमा जी को किस तरह का सिनेमा पसंद है तो क्या कहेंगी आप? आपको व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का सिनेमा पसंद है?
0: मुझे अलग अलग तरह का, मूड के हिसाब से। मैं वेस्टर्न सिनेमा देखती हूँ बहुत, और मुझे कभी रोमांटिक फिल्में पसंद आती हैं, कभी मुझे बहुत गंभीर फिल्में देखने का दिल होता है। ऑल टाइम हिट जो फिल्में हैं जैसे डॉक्टर जिवागो और बहुत सारी ऐसी फिल्में, थ्रिलर हैं, हर तरह का सिनेमा मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त है कि वो क्लासिक और अच्छा होना चाहिए। और फिर आपके मूड पे भी है, कभी कभी बचपन याद करने के लिए राजेश खन्ना जी का फिल्म देखने का मन करता है कि वो फिल्में, वो याद, वो दौर है ना
1: जी।
0: बाकी मुझे सत्यजीत रे का सिनेमा, ऋतिक घटक का सिनेमा, इंडियन में अपना ऋषिकेश मुखर्जी, ये इन लोगों का देख के आपको मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और बहुत सहज इनका फिल्म मेकिंग रही है, बहुत सहज रहा है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे शॉट ले रहे हैं, वैसे शॉट ले रहे हैं,
1: लेकिन लाउड सिनेमा नहीं,
0: बिल्कुल नहीं। और आप और हमारे इर्द गिर्द की कहानी, हमारे आसपास ही किरदार, आपको लगता है कि हाँ ये वो है हमारे अपने, ऐसा सिनेमा जिसे आज रियलिस्टिक सिनेमा बोलते हैं, वो मुझे पसंद है।
1: चलिए, तो आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं, फिर
0: जरूर
1: आगे बढ़ाते हैं।
0: कल्याण जी आनंद जी का फिल्म मेरे हमसफर का, किसी राह पे किसी मोड़ पे,
1: आइए सुनते हैं। बहुत ही

0: सीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहानी?
1: ज्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं, जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है वो चूंकि इतिहास है, तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने, तब से लेके विक्रमादित्य तक, तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे। एक मैं अभी मैं एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को कहते हैं वामा जी। तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थी उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह की जो कि वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपामुद्रा और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं
0: जी। तो कहाँ तक पहुंचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
1: लेखन तक है अभी, और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
0: क्या लगता है आपको, इस तरह का जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
1: देखिए, स्त्री होने के नाते, मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको केयरने में मुझे लगता है कि मैं काफी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे फिर उसको पढ़ना और गढ़ना, उस कैरेक्टर को, आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माताजी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे उसकी संवेदनाएं। और कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर, रेणु, टॉलस्टॉय ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से स्त्री का, सबसे ज्यादा आपके शरदचंद, उन्होंने तो स्त्री का ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है
0: जी। जिस तरह से उन्होंने लिखा लगता ही

0: ही कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है, स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा। तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही है तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां स्त्री को पहुंचना चाहिए।
1: जी, कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुंच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियां हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं, ढेर सारी समस्याएं। तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशियस रहती हूँ, सचेत रहती हूँ कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि स्त्री के पक्ष में हूं मैं, लेकिन मैं पुरुष के विपक्ष में नहीं हूँ, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ।
0: जी, जी।
1: क्योंकि संसार दोनों से चलता है।
0: जी।
1: है ना, आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर गेम है ये। पुरुष के हाथ में जब पुरुष सत्ता थी या है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था, लेकिन वही हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मेरे माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नजरों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मोजी बोलते थे, वो
0: जी।
1: कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मोजी आप ये कर दीजिए आप जनाब। तो हमने तो वो लोग देखे हैं जो स्त्री को इतना सम्मान देते थे।
0: आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद का।
1: जी।

0: की लेखिकाएं भी स्त्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की जरूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
0: बिल्कुल,
1: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है कि अब स्त्री को नए परिपेक्ष में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए
0: जी।
1: स्त्री का या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि स्त्री अभी जो स्वतंत्रता के नाम पे उच्छृंखलता जो हो रही है ना, वो स्त्री को और गुलाम कर रही है।
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा। और स्वच्छंदता शब्द तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर ये सही नहीं बैठता है,
1: दोनों के लिए गलत है। तो स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं। ये स्वतंत्रता नहीं। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए
0: जी,
1: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो,
0: फ्री
1: ये होना चाहिए।
0: उसे स्वतंत्रता
1: जी
0: चाहिए जी, अपने निर्णयों को लेना सीखे कि जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात करें, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहां तक सहमत है? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है या वहां कहीं ना कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आ रही है?
1: देखिए, समाज में मुझे क्या लगता है कि जब से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है, तब से हास होने लगा है
0: जी।
1: अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मद्यपान कर रही है या ये कर रही है वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज बोलना चाह रहे हैं आपके? मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज? इसके तो मैं खिलाफ हूं। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है तो भी गलत है, है ना। तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीजें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज्यादा आप हाईलाइट करके और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूं मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब। तो पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं।

0: मेरे एक वहां पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पूरी हिसाब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ बड़ी अच्छी बात है, ये तो पूरी साहब करेंगे। पूरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा काय का एड है, बोले सिगरेट का। तो पूरी साहब बोले उससे पहले ही, मैंने कहा नहीं पूरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पूरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करूंगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग? मैंने कहा पूरी साहब अगर आपके कहने से नहीं पिएंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो 1000 लोग देखेंगे, 2 लोग तो पिएंगे, है ना। अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हो या ना हो, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है, आपको हीरो मानता है वो या हीरोइन मानता है, आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो है आपने स्टेक पे लगा दी है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो पूरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड। तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए।
1: जी, आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती।
0: जी
1: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, और आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी, मेरी पसंद

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज सहानी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी,
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की, है ना, और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने
0: बहुत सारी जी, ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब
1: जंपिंग जैक के नाम से जाने जाते थे,
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उन्हें एक अलग रूप देखने को मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिकाएं आपको पसंद?
1: नायिकाओं में मुझे वो बिचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं। लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी,
0: मधुबाला।
1: उनकी सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहाँ कॉमेडी कहाँ सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, वो उनका एक स्टाइल था, और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर है अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज्यादा अच्छा हो।
0: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी, लेकिन की खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
1: जी जी,
0: तो कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए,
1: जैसे अभी ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है। परफॉर्मर अच्छी है, मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी है, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करी वो सब, जबकि देखिए ना, मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या, उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी,
0: बहुत सुंदर
1: जी,
0: आंखें बोलती थी उनकी
1: जी,
0: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका
1: परफॉर्मर। मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं।

0: वो निर्देशक के कलाकार होते हैं। निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
1: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा,
0: निर्देशक
1: है?
0: कितना स्ट्रॉन्ग है अपने काम में।
1: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं, तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
0: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अन्नू भाई के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते थे। बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो, चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला।
1: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार,
0: बहुत अच्छी,
1: बहुत ही संचिता कलाकार है
0: जी। और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका, और मेहनत करती है, चीजों को बार बार पूछना सवालों को, कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से पूछते हैं
1: जी,
0: गांव में तो नहीं रहे हुए होते हैं। तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम, बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है। तो वो ख्याल रखना वो निर्देशक का भी जरूरी है, कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए, थोड़ा कमजोर हो जाए, तो निर्देशक का वो बनता है। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने
1: स्टार्टिश कलाकार हैं, अच्छे और परिपक्व कलाकार हैं, जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें, जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर कि ये क्या एक्टिंग कर,
0: कमजोर नहीं पड़े ये अपने अपने किरदार में,
1: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
0: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, मैं लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं,
1: बहुत सुंदर गाना है। चलिए तो सुनते हैं यही गीत।

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया, और इससे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है
1: जी।
0: आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में।
1: हाँ।
0: बहुत ही सुंदर उसका शीर्षक है,
1: यू गुजरी है अब तलक। जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पुरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड
0: जी,
1: तो उसमें मेरे भाई, मेरी माता जी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक ना एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावानल चलता रहता था, आपको एक कोना चाहिए जहां आप रो सकें, जहां आप कथार्सिस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे, उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूँ, और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
0: जी,
1: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको, फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया
0: जी।
1: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे थिएटर कंपनी के बाबूजी की जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थी, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थी, स्टेज पे कमाती थी लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो
0: जी।
1: तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया, और ऐसे मैंने मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीजें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही

0: है, वही बुग्गी है और वही चंदा है और वही शरीफ भाई है, और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं, वो उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में। क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष के इतने अमीर माता पिता की संतान होके आज देखिए, जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई, भुखमरी आ गई, है ना, सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने, सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का, ये मैंने उसमें लिया और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया।
1: काफी चर्चित रही ये किताब और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक किताब रही ये युगश्री अब तलक, और उसमें मुझे लगता है कि हम
0: साहित्य तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10 में बुक में
1: शामिल किया, और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी, आगे भी आप यूं लिखती रहे, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही है। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।

0: आगे की नए प्रोजेक्ट्स आपकी क्या क्या हैं, बस ये जानना चाहते हैं।
1: जी वो फिल्म बना रही हूँ, दो सीरियल का है वो कर रही हूँ, एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं। जी एक जगह है जहाँ पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती है, कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी पड़ती है, और नदी कैसे पार करनी पड़ती है, टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती हैं।
0: अरे
1: तो वो मैं बना रही हूँ, अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके, तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी काम करूं, मेरी जो महिलाएं हैं, मैं चूंकि स्त्री हूं तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इस लाइन में आने वाली स्त्रियों को आप क्या कहना चाहती हैं, युवा स्त्रियों को जो इस लाइन में आना चाहती हैं बतौर राइटर, बतौर निर्देशक, बतौर एक्टर?
1: देखिए कोई भी विधा, जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक कोई पत्रकार हैं वो एक्टिंग में चले गए तो लोग उनको डिफेंड करने लगे कि भाई लोग सीखते सीखते सीखेंगे। मैं इसके खिलाफ हूँ। एक तो जो कलाकार आता है, जो जैसे अभी एनएसडी से ट्रेंड एक एक्टर आ रहा है
0: जी,
1: ठीक है, आपने उसकी रोजी रोटी छीन रहे पहली बात, जिसने इसी को पढ़ा है, जो यही कर रहा है, और फिर जब करोड़ों रुपए एक फिल्म में लगते हैं तो वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई रोटी बनाना है कि धीरे धीरे सीखेंगे।
0: हाँ,
1: नहीं,
0: तो सीखने की प्रक्रिया भी चल रही है।
1: हाँ, ये प्रक्रिया नहीं है, करोड़ों रुपए आप पे लगते हैं तो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि देखिए दो तरह से आप सिनेमा की तरफ आकर्षित होते, ग्लैमर और पैसा। तो जब ये दो चीजों से आकर्षित होके आप आते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं आपको 5% होंगे। लेकिन आप कलाकार हैं, आप पढ़ते हैं, आपने सिनेमा पढ़ा होता है, थिएटर पढ़ा होता है, आपने लिटरेचर पढ़ा होता है, म्यूजिक पढ़ा होता है, ये सारी चीजें जब आपने की होती है, थिएटर किया होता है और टेक्निक जानते हैं, मतलब ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर बिना MBBS किए डॉक्टर, हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे, एक इंजीनियर से बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो नहीं है, इसी तरह कलाकार को, कला क्षेत्र को आप ऐसे मत सोचिए कि कोई भी आके कर ले, उसके लिए आपको ट्रेन होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कुछ बनेंगे।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आपने एक संदेश युवा आने वाली लड़कियों को खास तौर से दिया है, जो केवल शारीरिक सौंदर्य के बल पर आना चाहती हैं और दूसरी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि किसी भी लाइन में जाने से पहले आपको वहां के लिए पढ़ना और गुनना बहुत जरूरी है खुद को। तो बॉम्बे टॉकीज में आज सीमा जी आपने विविध भारती के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: नहीं, विविध भारती तो जिंदगी में जब हम बच्चे थे तब से जुड़ा हुआ है हमसे, और जहां से जाएंगे तो विविध भारती सुनते हुए ही जाएंगे, कोई ना कोई गाना चलता ही रहेगा।
0: जी तो चलिए एक और गाना जान लेते हैं इस कार्यक्रम का।
1: जी एक गाना मजरू साहब का है, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, LP का म्यूजिक है, ना जा अब कहीं ना जा
0: दिल के सी।

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का

0: निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि ये निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह प्रमाण है कि जब भारत के युवाओं के नवाचार और उद्यमशीलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक सुधारों का समर्थन मिलता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में परिवर्तनकारी अध्याय की शुरुआत है। श्री बिरला ने कहा कि विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने अपनी बढ़ती तकनीकी उत्कृष्टता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगॉव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इसका उद्देश्य इंडिया पोस्ट के लिए ऐसा आधिकारिक शुभंकर तैयार करना है जो संगठन के विश्वास, विश्वसनीयता, सेवा और डिजिटल नवाचार जैसे मूल्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करे। ये प्रतियोगिता सभी नागरिकों के लिए है। प्रतिभागियों को माईगॉव पोर्टल के माध्यम से मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे अमरीका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यूफी को चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। पेश है गीत फिल्म शहीद से, और इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण और भूपिंदर सिंह ने।
1: मेरा रंग दे बसंती।

आपने सुना फिल्म संगीत FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लम्हे प्रोग्राम में और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। आसपास के वातावरण साफ सुथरा हो तो किसे अच्छा नहीं लगता है, और इसमें नगर निगम और स्वच्छता कर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो तो अपने तरफ से पूरा योगदान देते हैं, परंतु इसके बावजूद कुछ लोग गंदगी और कचरा करने से बाज नहीं आते। वह भी इंसान ही है, आखिर कितना साफ करेंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास को साफ रखने की जिम्मेदारी स्वयं ही करना है, ताकि साफ सफाई से हम स्वस्थ रहे और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे। आसपास की रखो सफाई, इसमें हम सबकी भलाई। स्वच्छ रखेंगे वातावरण, स्वस्थ रहेंगे हम हर पल हर क्षण। घर को हर दिन करें सफाई। हमें हमारे घर के हर रोज सफाई करना चाहिए। वह कचरा इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, इससे कीटाणु पनपते हैं और बीमारियां फैलती है। घर में कुछ ऐसे कोने होते हैं जिसे नियमित रूप से सफाई करना चाहिए, जैसे रसोई घर। रस

रसोई घर जहाँ हमारा भोजन इत्यादि बनता है उसकी सफाई नियमित होना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। गैस स्टैंड बर्तन रखने की जगह सभी जगह साफ करना चाहिए। रोज किचन की झाड़ू लगाना चाहिए ताकि खाने के साथ हम कोई गंदगी अपने खाने में आने न दे और साफ सुथरा भोजन ही खाए, साफ सुथरा किचन रखे। नियमित पोंछा और धोने जैसे सामान को धोए, बाथरूम को रोज साफ करें, दीवारें साफ करें, कुछ अच्छे से एंटीमाइक्रोबियल यूज करके साफ करें तो और भी अच्छा है। जहां हम हमारी गाड़ी रखते हैं वहां रोज झाड़ू लगाए और बगीचे में सफाई रखे हो, कोई भी कचरा और प्रयोग में न आने वाले सामान को इकट्ठा न होने दे। यदि हम हमारे किचन, बाथरूम और पूरे घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे तो चचुंडर, कॉकरोच, मक्खी, चीटियां, मच्छर आदि पनपते हैं और साफ सफाई में अगर हम लापरवाही बरतते हैं, बर्तन और अन्य सामानों के साथ ये गंदगी हमारे मुंह में जाते हैं जिससे हमें कई तरह की बीमारियां पकड़ लेते हैं। यदि मच्छर पनपते हैं तो मलेरिया, कॉलरा,

0: धोने जैसे सामान को धोए, बाथरूम को रोज साफ करे, दीवारें साफ करे, कुछ अच्छे से एंटीमाइक्रोबियल यूज करके साफ करे तो और भी अच्छा है। जहां हम हमारी गाड़ी रखते हैं वहां रोज झाड़ू लगाए और बगीचे में सफाई रखे हो, कोई भी कचरा और प्रयोग में ना आने वाले सामान को इकट्ठा न होने दे। यदि हम हमारे किचन, बाथरूम और पूरे घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे तो चचुंडर, कॉकरोच, मक्खी, चीटियां, मच्छर आदि पनपते हैं। और साफ सफाई में अगर हम लापरवाही बरतते हैं, बर्तन और अन्य सामानों के साथ ये गंदगी हमारे मुंह में जाते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां पकड़ लेते हैं। यदि मच्छर पनपते हैं तो मलेरिया, कॉलरा, निमोनिया, पीलिया या सब बीमारी होती है जो कि गंदगी की वजह से फैलती है। इसीलिए हमें हमारा घर और आंगन की सफाई पर नियमित ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पूरे घर पर नियमित झाड़ू और पोंछा लगाना चाहिए। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। धूल इत्यादि को पहुंचने और बगीचे में कहीं भी पानी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी बीमारी का लक्षण होता है, इसीलिए बचना चाहिए और नियमित साफ सफाई करना चाहिए। कुछ लोगों का सोचना है कि जहां गरीब व्यक्ति रहते हैं वही ज्यादा गंदगी होती है, परंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीबी और साफ सफाई का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। गरीबी तो इंसान की मजबूरी है, परंतु सफाई तो उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अमीर या गरीब मायने नहीं रखता, और घर की साफ सफाई में सबकी बराबरी से हाथ बांटने की मंशा होनी चाहिए। केवल घर के बड़े, जिसमें माँ होती है, माँ घर के हर काम को करती है, तो क्या ये घर केवल माँ का होता है? उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का नहीं होता है। इसीलिए सभी सदस्यों को मिलजुल कर इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, और यह सोच परिवार के हर सदस्य के नजरिए पर निर्भर करता है। बचपन से ही बच्चों की देखभाल माता पिता और घर के अन्य सदस्य करते हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें आपको सिखाना होगा कि साफ सफाई रखना जरूरी है। बचपन से ही उसे अपनी सफाई की शिक्षा दे, साथ ही उसे अपने आसपास की जगह को साफ रखना सिखाए। उसे बताए कि अगर साफ सफाई नहीं रखी जाएगी तो बीमारी होगी, और बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए उसे बताए कि अपनी साफ सफाई रखे और अपने आसपास की जगह को भी साफ रखे। साफ सफाई में अपने बड़ों की मदद करे, इससे वह भी साफ सफाई करना सीखेगा और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।
1: साफ सफाई इंसान की फितरत होती है। वह अपने घर के आसपास तो साफ रखते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं घर ही को अपना समझते और अपने घर के बाहर झूठा और जो भी कचरा होता है उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल घर के अंदर तक ही सीमित है। इसीलिए अपना फर्ज भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि सड़क, अपने घर का बगीचा साफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। सड़क से ही गंदगी हमारे घर तक आती है, और इसके साथ ही कई तरह की बीमारियां भी लेकर आती है। इसीलिए स्वयं साफ सफाई रखें, और जो कर्मचारी और नगर निगम की गाड़ियां आती है उसमें अपने घर को साफ रखकर उन्हें अपना पूरा योगदान प्रदान करें। इस प्रकार हम हमारे घर के और आसपास की सफाई हमारे स्वास्थ्य के साथ ही वातावरण को भी साफ रखते हैं, और इसका प्रथम पाठ हम हमारे घर से ही मिलता है। यदि हम हमारे घर को और हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे तो धीरे धीरे शहर और शहर, देश, सभी जगह सफाई दिखने लगेगा। प्रदूषण में जमा हमारे देश की गिनती निचले स्तर पर की जाती है, वही हमें आगे और आगे प्रथम स्थान पर लाना होगा, और इसकी शुरुआत हमें हमारे आसपास के वातावरण से शुरू करना होगा।

0: देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। विद दिस लवली कोट, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे इन लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आपने सुना स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे FM 107.2 MHz पर। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: पेश है प्रोग्राम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
1: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने एक्टिंग, पॉडकास्टिंग और उद्यमियता में अपनी अलग पहचान बनाई है और बुलंद हौसले के साथ जिंदगी में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इनके लिए हम ये कह सकते हैं कि ख्वाब भले टूटते रहें, हौसले फिर भी जिंदा हों। ख्वाब भले टूटते रहें, हौसले फिर भी जिंदा हों। हौसला अपना ऐसा रखो कि मुश्किलें भी शर्मिंदा हों। आज सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में हमारे हम सफर हैं एक्टर, पॉडकास्टर और एक सफल उद्यमी श्री सुप्रीत सिंह। सुप्रीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं जिन्हें बचपन से सुनता आ रहा हूँ, आज उनके साथ बैठकर, इनफैक्ट ऑन द अदर साइड, ये इन अ वे छोटे छोटे सपने होते हैं हर किसी के। शायद कभी ये सपना मैंने भी देखा हो जो आज पूरा हो रहा हो। तो आकाशवाणी में और आपके साथ बैठकर मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये,
2: क्योंकि आपको देखने से लगता है कि आप बचपन में बहुत शरारती रहे होंगे। तो बचपन कैसे बीता? बहुत शरारते करते थे आप?
3: एक्चुअली क्या है कि जब तक मेरी छोटी बहन नहीं हुई थी तब तक था मैं, उसके बाद वो शरारत का उसने पकड़ लिया था। तो उसके बाद आई वॉज अ वेरी एक्टिव चाइल्ड। बचपन से मुझे कुछ करना था लाइफ में शुरू से, चाहे वो पढ़ाई में हो, क्रिकेट में हो या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स में हो, जब जहां मौका मिलता था वो मैं करता था। आई वॉज अ वेरी एक्टिव चाइल्ड, वेरी क्यूरियस चाइल्ड, क्योंकि ये बहुत कम होता है कि लोगों को अपना बचपन याद होता है। मुझे लगभग जब मैं 3 साल या 4 साल का था तब से याद है, क्योंकि एक आग थी शुरू से कि लाइफ में कुछ करना है। एक मौका मिले कि जैसे आपके सामने मैं आया हूँ, शो में आया हूँ, तो मैं भी अपनी कहानी कभी बोल सकूँ। तो ये एक आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड इनफ, उसने रास्ते दिखाए
2: जी।
3: और कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत भी कर पाया हूं, फिर भी महसूस होता है कि ये तो शुरुआत की है अभी।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप बचपन की बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि बचपन से दिल में कुछ करने की तमन्ना थी आपकी, तो कहां बीता आपका बचपन और कैसे बीता? और ये जो कुछ करने का जज्बा है आपके मन में, किस तरह से ये बीज जो है वो पनपा?
3: मेरा जन्म फगवाड़ा में हुआ था, पंजाब में एक शहर है फगवाड़ा। आई थिंक मैं 3 या 4 साल का हूंगा तब मेरे पिताजी चंडी

0: आ गए थे, उनकी ट्रांसफर हुई थी, वो उस समय जॉब में थे, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एरिया मैनेजर बने थे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में, एक मल्टीनेशनल में थे। उसके बाद फिर सेक्टर 44 में ही बचपन निकला, और पहले सेंट पैट्रिक्स 34 में ही मैं पढ़ता था, फोर्थ तक यहाँ पढ़ाई की, पर फोर्थ के बाद वो स्कूल नहीं था, तो फिफ्थ में फिर मैं सेंट जेवियर्स चला गया। फिर सेंट जेवियर्स से टेंथ की पढ़ाई करने के बाद इलेवेंथ SD स्कूल, ट्वेल्थ खालसा स्कूल, फिर उसके बाद IIT की तैयारी की, IIT तो नहीं हुआ बट इंजीनियरिंग की, CET में अच्छा रैंक आया था तो पंजाब से इंजीनियरिंग की थी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में
1: जी।
0: तो यहीं से चंडीगढ़ में ही बड़ा हुआ हूँ, चंडीगढ़ को बदलते भी देखा है और आपको सुना है बचपन से, तो वो भी बहुत अच्छी यादें हैं।
1: सुप्रीत जी, कभी सोचा था आपने जिंदगी में कि जिंदगी का ये जो सफर है आपको एक एक्टर, पॉडकास्टर और उद्यमी बनाएगा?
0: सर ये तो जरूर पता था कि कुछ ना कुछ तो करूंगा, ये नहीं पता था क्या करूंगा, बस कुछ करना था। बचपन में क्रिकेट पकड़ लिया था और क्रिकेट में सक्सेस भी अच्छी मिल रही थी, पर जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि पेरेंट्स को, फादर को स्पेशली, एक समय के बाद होता है कि बच्चे पढ़ भी लो, साथ में हम रोक नहीं रहे पर पढ़ लो। तो 11th में मेरी परसेंटेज कम आई थी, तो उसके बाद पापा ने बोला कि अभी तेरा लग नहीं रहा इतना उस हिसाब से, एंड उस समय IPL और ये सब चीजें नहीं थी, तो यू फोकस ऑन योर स्टडीज। वो समय लगा कि यार एक सपना टूटा, फिर लगा कि नहीं चलो पढ़ के शायद कुछ करेंगे, पढ़े तो उसमें नहीं हुआ, फिर बाद में करते करते एक समय ऐसा आया कि लगा कि कुछ नहीं हो पाएगा, वो आया, वो भी समय आया। फिर उसके बाद कुछ पॉजिटिव बुक्स ने काफी हेल्प किया, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक किताब थी, उसने काफी लाइफ चेंज की, कर्मा योगा बाय स्वामी विवेकानंद, ऐसी किताबें पढ़नी शुरू की, फिर समझ आया कि कितनी पावर है यूनिवर्स की हमारे अंदर ही, और अगर हम सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं और लगे रहते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स आया, उसमें सक्सेस मिली, फिर सक्सेस तो मिलती थी बट मैं कुछ देर के बाद आई थिंक बहुत इंपेशेंट हो जाता था कि जल्दी बहुत कुछ करना चाह रहा था, तो जिस वजह से पहुंच नहीं पा रहा था।
1: बिल्कुल, आपको लगता है कई बार कि हम लोग यहां पर पहुंचे हैं, इससे आगे बढ़ेंगे, तो लगातार आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है।
0: जी जी।
1: तो जिस तरह से आपने बताया कि इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की, तो उसके बाद आप कनाडा भी गए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कनाडा गए फिर वापस आए, वो सारी बातें।
0: सर कनाडा को तो मैं अपना टीचर मानता हूँ, जो जिंदगी में आज की डेट में मैं कर पाया हूँ उसका जो कह सकते हैं डिसिप्लिन वाला बीज है वो कनाडा में ही डला। यहाँ पर इंजीनियरिंग करते हुए नो डाउट आई वाज अचीविंग थिंग्स, बट एक घर के कंफर्ट जोन में था, और कंफर्ट जोन में ज्यादातर बच्चे जो घर से बाहर नहीं निकलते उन्हें घर की वैल्यू तब तक नहीं पता चलती जब तक वो घर से बाहर नहीं जाते, और जब वो ऐसे मुल्क में जाते हैं जहाँ पे सब कुछ ही अलग है वो बहुत कुछ सिखाता है। और यही हुआ, इंजीनियरिंग के बाद मैं कनाडा गया, इनफैक्ट आई वाज अ परमानेंट रेजिडेंट देयर। मेरे फादर ने जब जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू किया था तो एज अ बैकअप फैमिली का एक वीजा लगाया था, जैसे इंजीनियरिंग खत्म हुई तो मैं कनाडा पहुंच गया। इनफैक्ट ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग आल्सो माय फादर ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो मैं थोड़ा थोड़ा बिजनेस में उनके आ गया था, समझने लग गया था, फील्ड में भी जाता था, मैनेज करता था, बट अंदर से था कि एक्टर बनना है या कोई परफॉर्मर बनना है। तो जैसे कनाडा गया तो मेरे फादर ने बोला अब वहां गए हो तो जो करना चाहते हो वो करो, तो वहां जाते ही बस दो ही ऑप्शन है, या तो एक्टिंग का कोर्स ज्वाइन करूंगा या ब्रॉडकास्टिंग का करूंगा। एक्टिंग का कोर्स लेट था और महंगा भी था, ब्रॉडकास्टिंग का थोड़ा सस्ता था और इमीडिएटली शुरू हो रहा था। तो आई ज्वाइन ब्रॉडकास्टिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का डिप्लोमा आई डिड फ्रॉम वैंकूवर, एंड दैट चेंज माई लाइफ, क्योंकि कम पैसे में कैसे मैनेज करना है वो भी कनाडा जैसी कंट्री में। आई एम टॉकिंग अबाउट 2009 बॉक्सिंग डे के दिन वहां पहुंचे थे, और उसके बाद उस समय इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी जितनी आज की डेट में है, बट फिर भी महंगाई थी। उसने पैसे की वैल्यू सिखाई, फैमिली की वैल्यू सिखाई, समय की वैल्यू सबसे ज्यादा सिखाई, और एक तरह से कह सकते हैं डिसिप्लिन एक लाइफ में आया, वो तो मेरे लिए टीचर है
1: जी। तो ब्रॉडकास्टिंग का आपने डिप्लोमा किया, तो उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग में किस तरह से आए, पहला प्रोग्राम वहां पे कौन सा किया आपने और क्या अनुभव रहा आपका?
0: जब मैं डिप्लोमा कर रहा था उसी समय इंटर्नशिप का मौका मुझे मिला था, उस समय RJ 1200 एक रेडियो स्टेशन था वहां पे, सुषमा जी चलाते हैं उन्हें, शी इज अ वेटरन ब्रॉडकास्टर इन नॉर्थ अमेरिका, तो उन्होंने मुझे मौका दिया था, रिमझिम रेडियो था वहां पे, तो उस पे झनकार के नाम से एक प्रोग्राम था, तो मुझे खुली छूट मिली थी और पूरी क्रिएटिविटी करने की, तो मैं कई तरह की आवाजें निकालता था और अपने हिसाब से गाने चलाता था और एंटरटेनमेंट फील्ड को लेके, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेके न्यूज सुनाता था तड़का लगा के।
1: जी बिल्कुल, थोड़ा सा हो जाए वो तड़का लगा के, वो आवाजें, वो सब कुछ।
0: रिमझिम रेडियो पे आप सुन रहे हैं झनकार, और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सनी सिंह। तो सनी सिंह मेरा नाम था उस समय। अच्छा। तो उस समय जैसे सोच रहा हूँ मैं सनी सिंह आपके सामने लेकर आया हूँ ये प्रोग्राम। तो तारीख पे तारीख। तो ये मिमिक्री उस समय 50 से ज्यादा आवाजें निकाल लेता था, तो कई बार

0: लड़की की आवाज भी निकाल लेते थे
1: थोड़ा सा। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे, बहुत गलत बात की तुमने, मैं नहीं तुम्हारे साथ रह सकती।
2: क्यों नहीं रह सकती?
1: नहीं, तुम मुझसे दूर रहते हो।
2: देखो ऐसा मत कहो।
1: नहीं, अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते।
2: बहुत ही कमाल। क्योंकि एक जो ब्रॉडकास्टर होता है, एंटरटेनर होता है, चाहे रेडियो पे हो, चाहे टीवी पे हो, चाहे स्टेज पे हो, कहीं भी हो, वो अपने लिसनर्स को, अपने व्यूअर्स को बांध के रखता है, और आप बखूबी जानते हैं कि उनको कैसे बांध के रखना है। तो ब्रॉडकास्टिंग आपने कितने देर की वहां पे?
0: ब्रॉडकास्टिंग में मैंने लगभग 2.5 साल काम किया एक्टिवली। फिर उसके बाद वन डे आई फेल्ट लाइक कमिंग बैक, मुझे वापस उसी समय क्योंकि अकेला था तो मेडिटेशन काफी करने लग गया था।
2: क्योंकि लोग तो आज भी अगर हम लोग देखें कनाडा अमेरिका में जाते हैं तो वो इस सपने के साथ जाते हैं कि वहां पे जाके पीआर मिल जाए, वहां के परमानेंट रेजिडेंट बन जाएं। तो आपको तो पीआर मिल गई थी कनाडा की, फिर वापस आने का क्या कारण था खास कोई?
0: मैं यूनिवर्स की कॉलिंग से बहुत बिलीव करता हूँ और मेरी जिंदगी वैसे ही रही है, तो एक सरेंडर मोड पे रहने की कोशिश रहती है। उस समय कनाडा में ब्रॉडकास्टिंग ने एक बहुत अच्छा मुझे अनुभव दिया। मैं मैक्सिमम लोगों को मिलता था, हर कोई कहता था कि पैसे कमा के वापस चंडीगढ़ जाके कोठी बनानी है, सभी का यही होता था। और कहीं ना कहीं एवरीबॉडी यूज्ड टू लिव और मिस द लाइफ ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़, या इंडिया की लाइफ को मिस करते थे, और ये भी कहते थे कि एक बार जब यहाँ पे परिवार शुरू हो जाता है तो आप यहाँ फंस जाते हो, फिर आप निकल नहीं पाते यहाँ से। तो वो चीजें कहीं ना कहीं, एंड प्लस आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन एज वेल। कई बार समुद्र किनारे मैं जहाँ रहता था वहां पे एक नदी थी, तो मैं बैठ जाता था वहां पे, तो आंसर्स बहुत मिलते थे। फिर अपने पिताजी से बात की तो वो भी पहले तो शॉक हुए कि तू अच्छा भला कर रहा है, थोड़ा और करेगा तो ग्रोथ मिलेगी इंडस्ट्री में, और मिल ही रही थी, वो भी देख रहे थे उस चीज को। इवन माय रिलेटिव्स वर शॉक्ड, जैसे वो कहते ना कि सारी दुनिया कनाडा आने के लिए तरसती है, तू पीआर को लात मार के जा रहा है, पता नहीं है क्या करेगा। तो मुझे नहीं फर्क पड़ा एंड आई जस्ट केम बैक। इनफैक्ट थोड़ी देर में डिलेमा में रहा, पर इतना नहीं रहा, एंड गॉड वॉज काइंड इनफ, वो सारी चीजें सही रही। हाँ, ब्रॉडकास्टिंग को मैंने बहुत मिस किया, मैंने कोशिश भी की उसके बाद। इनफैक्ट कुछ एड्स मैं यहाँ से बना के भी भेजता रहा काफी देर, कोशिश करता रहा किसी तरह ब्रॉडकास्टिंग रहे जारी, या परफॉर्मिंग आर्ट्स रहे। म्यूजिक वीडियो में भी काम किया उसके बाद एज अ मॉडल एक्टर, वो भी किया। पर वो जब काम शुरू किया, फिर उसके बाद टर्निंग पॉइंट था मेरी डॉटर का बर्थ। शी वॉज बॉर्न इन 2014 अक्टूबर, वो प्री मेच्योर थी एंड मेरे पास हॉस्पिटल के देने के पैसे नहीं थे, तो क्योंकि वो 9-10 दिन निकू में रही थी, एंड ऑब्वियसली माई फादर वॉज मेकिंग डिसेंट मनी, बट मुझे लगा कि मैं बाप तो बन गया हूँ पर अभी काबिल नहीं हुआ। फिर उस समय सब कुछ छोड़ दिया एंड आई फोकस्ड ओनली ऑन जो फार्मास्यूटिकल का जो मैंने काम शुरू किया था अपने पिताजी की मदद से
2: जी।
0: फिर ऑलमोस्ट 9 साल आई डिडंट डू एनीथिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स बिल्कुल साइड पे हो गई थी।
2: बट बेटी की बर्थ के बाद आपने बिल्कुल ये सारा कुछ छोड़ के आपने सोचा कि थोड़ा और जिंदगी में आगे बढ़ा जाए और एक सफल उद्यमी की तरफ आपके जो कदम हैं वो चल पड़े।
0: वो उस तरफ चले गए। इनफैक्ट उससे पहले आई गॉट रिकमेंडेड एज एन ऑफिसर इन टेरिटोरियल आर्मी एज वेल, तो मेरा SSB क्लियर हुआ था, बट वो बाई चांस ही मेरी वेरिफिकेशन प्रोसेस लंबा चला गया था। बट बाय द टाइम आई गॉट माई लेटर, मैं अपने बिजनेस जो बढ़ा रहा था उसमें इतना फंस गया था, मैं कहीं निकल ही नहीं पाया फिर। पर एक चीज भगवान ने बहुत अच्छी मुझे डायरेक्शन दी, जो मैं सबको कहता भी हूँ आज की डेट में, कि एक से कहीं चीजें बन सकती हैं, हजार चीजें बन सकती हैं, हजार से एक नहीं बनेंगी, तो पहले एक पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अब उस एक की वजह से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ और उसमें समय लगता है और एफर्ट भी लगती है।
2: बिल्कुल, आपने वो साइको केयर कंपनी जो बनाई, आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई, तो उसी से जिंदगी में आपने आगे बढ़ने का सोचा, तो मदद सबसे पहले आपकी किस तरह से हुई वो थोड़ा बताएं।
0: मदद तो फैमिली से ही मैं कह सकता हूँ, फैमिली की सबसे बड़ी सपोर्ट रहती है। इनफैक्ट आई गॉट मैरिड वेरी यंग इन अ वे बाय माय चॉइस, इट वाज अ लव मैरिज, एंड मैं 25 साल का ही था तो जब आई गॉट मैरिड, 27 का था जब मैं फादर बना। आज की स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये थोड़ा जल्दी माना जाता है। तो देन माई फादर, ही बिलीव्ड इन मी, उन्होंने जो इनिशियली पैसे दिए और बिलीफ रखा वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। प्लस एवरीवन, माय मदर, माय सिस्टर, एवरीवन, दे सपोर्टेड अ लॉट। और आज लगभग मुझे वापस आए 14 साल हो गए हैं और मैं कनाडा वापस भी गया हूँ। इनफैक्ट अभी मेरी कंपनी भी है कनाडा में। बट वो 14 साल में एक चीज महसूस हुई कि बिना परिवार की सपोर्ट के आप नहीं कर पाते, और वो जो एक साइलेंट और हिडन जो सैक्रिफाइसेस होती है फैमिली की, वो आपको बहुत अंदर से शक्ति देती है। मैक्सिमम वहीं से सपोर्ट मिली है, बाकी यूनिवर्स मैं बहुत मानता हूँ कि उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता।
2: और आपका एक्टर बनने का सफर कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, पहला ऑडिशन और पहला ब्रेक कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए?
0: कॉलेज टाइम में आई वाज इनटू एक्टिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। इनफैक्ट मुझे बेस्ट डांसर का खिताब भी मिला था उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मेरे एक डांस टीम हम लीड करते थे। मैं 2008 की बात है, 7 या 8 की बात।

0: अच्छा था, उसी समय मैं थोड़ा थोड़ा थिएटर्स करना शुरू किया था कॉलेज टाइम पे, मैं ऑडिशंस भी देता था। आई रिमेम्बर एक ट्रैक्टर कंपनी थी, उनकी कॉर्पोरेट वीडियो भी मैंने कॉलेज टाइम पे ही, आई वाज द मेन लीड फॉर दैट, पर इतनी सीरियसनेस नहीं थी। फिर वो जो कहते ना कीड़ा एक्टिंग का तो था और वो रहना था, और वो वॉइड भी वही था, वो महसूस हो रहा था, एक ब्रॉडकास्टिंग का और एक एक्टिंग का जो वॉइड था, क्योंकि इतना काम करने के बाद भी अंदर एक बेचैनी थी, वो समझ नहीं आ रहा था क्यों थी। देन 1.5 साल पहले मैंने फिर से एक्टिंग सीखनी शुरू की, फॉर्मली इस क्राफ्ट को सीखना शुरू किया दोबारा से। पहला प्ले फरवरी में मैंने किया, टैगोर थिएटर में परफॉर्म किया था, आउट ऑफ फ्रेम। वो भी कुछ कुछ कहानी मेरे जैसे आपके जैसे जो आर्टिस्ट है उनकी कहानी है, जो सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, और वो इसलिए मुझे आउट ऑफ फ्रेम रहते हैं सोसाइटी में। हाँ जी, और उसी से फिर शुरुआत हुई। अब दूसरा परफॉर्मेंस हमने चितकारा यूनिवर्सिटी में किया, अब बहुत जल्दी विजुअल मीडियम में भी आई विल बी परफॉर्मिंग इन थिंग्स।
1: जी
0: हाँ जी,
1: तो एक्टिंग के साथ साथ आप पॉडकास्टर भी हैं, तो एक्टिंग से पॉडकास्टर बनने का सफर जो है वो किस तरह से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ?
0: ब्रॉडकास्टिंग भी कॉलेज टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी, और मुझे किसी मेरे दोस्त ने कहा था कि ये आवाज तेरे को बहुत जगह घुमाएगी और बहुत चीजें दिलाएगी जिंदगी में, ये आवाज के जरिए तू लोगों तक भी पहुंचेगा, तेरी बात भी पहुंचेगी, तेरा थॉट प्रोसेस भी, और कई और लोगों के थॉट प्रोसेस पहुंचेंगे। तो समय मैं मजाक समझता था कि क्या बोल रहा है। उसी समय कॉलेज टाइम पे जो मेरी पहली जिंदगी की कमाई थी वो वॉइस ओवर से थी, तो मुझे किसी ऑडियो विजुअल के लिए वॉइस ओवर करना था। मुझे याद है आज भी 1000 रुपए मिले थे उस समय, तो 2007 या 2008 की बात है। एंड वहां से एक तरह से शुरुआत हुई, और वो कैसे जिंदगी में ब्रॉडकास्टिंग आई पता ही नहीं चला। पॉडकास्टिंग की शुरुआत मैं पॉडकास्ट 2012-13 से ही करना चाह रहा था, बट जब होना होता है तभी होता है। 2023 4 नवंबर को पहला हमने एपिसोड रिलीज किया, उसके बाद से वी हैवंट मिस्ड अ वीकेंड, लगभग 130 से ज्यादा एपिसोड्स अभी हम कर चुके हैं। एंड ये मेरे लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रही है, बिकॉज मुझे खुद नहीं महसूस कि मैं मेरे अंदर कितना बदलाव आया पॉडकास्ट करते करते, क्योंकि इतना सीखने को मिला है इतने लोगों की जर्नी से, इतने थॉट प्रोसेसेस से। आई फील ब्लेस्ड दैट वे।
1: सुप्रीत जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, बहुत मजेदार बातें हो रही हैं आपके साथ, और आपकी जिंदगी का जो सफर है वो बहुत ही सुहाना चल रहा है। तो कौन सा गीत आपको सुनवाएं, अपने श्रोताओं को सुनवाएं, जो आपको दिल के करीब हो आपके?
0: सर मुझे ना सूरमा फिल्म का गाना बहुत अच्छा लगता है, आगे मेरे अंधेरा पीछे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया, क्योंकि मैं शुरुआत से ऐसी रहा मेरा जीवन, तो ये मुझे बहुत रिलेटेबल।
1: जिस तरह से आपकी जिंदगी का सफर चल रहा है उसी तरह का आप गाना सुनना चाहते हैं?
0: जी
1: बहुत ही अच्छा गाना है, आइए सुनते हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और आज इस कार्यक्रम में हमारे हम सफर हैं एक्टर, पॉडकास्टर और एक सफल उद्यमी श्री सुप्रीत सिंह। सुप्रीत जी, आप बहुत ही सफल एक शो चला रहे हैं अपना, तो आपके पॉडकास्ट में आपने कई प्रेरणादायक इंस्पिरेशनल गेस्ट उनकी इंटरव्यू की होगी, तो अब तक किस इंटरव्यू ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया?
1: टॉप पे तो मैं बोलूंगा मेरे फादर के साथ किया था, सो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट पॉडकास्ट आई डिड, आई थिंक 20th या 25th पॉडकास्ट था। इनफैक्ट मेरे फादर ने मुझे उससे पहले टॉन्ट मारा था कि तू सबके साथ कर रहा है, हमने बाप को भूल गया। एंड आई थिंक ही ओपन्ड अप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ऑन माय पॉडकास्ट, सो दैट इज द मोस्ट स्पेशल वन। फिर मदर्स डे पे मैंने अपने मदर के साथ किया, वो भी एक बहुत स्पेशल एपिसोड था। फिर एक प्रभासरा एक इंस्टीट्यूट है, स्टार्टिंग में शमशेर जी है, उनके साथ पॉडकास्ट किया था, वो एक बहुत हार्ड हिट किया था बिकॉज वो निस्वार्थ भावना से उन्होंने जैसे वो सेवा करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और वो एक तरह से चीजें हिट की। फिर लॉट ऑफ आई हैव बीन वेरी लकी कि ओनली गुड पीपल एंड पॉजिटिव पीपल हैव बीन एबल टू कम ऑन माई शो। मेरे एक दोस्त हैं राजेश कुमार जी, जो साराभाई में रोसेश का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनकी स्टोरी वो भी वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड्स, इनफैक्ट वो 3 बार मेरे शो पे आ चुके हैं। एंड इट्स बीन ब्यूटीफुल जर्नी।
0: बिल्कुल, आपने पॉडकास्ट में कई लोगों को इंटरव्यू किया होगा, तो आज आकाशवाणी चंडीगढ़ में आके स्पेशली आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको?
1: सर, मैं तो आपकी आवाज का पहले फैन हूँ। ये आवाज सच में बचपन से हम सुनते आए हैं, और ये एक तरह से जो भी ब्रॉडकास्टिंग में है और चंडीगढ़ से है, आकाशवाणी में आना वैसे ही उसके लिए एक ड्रीम है। और आई वॉज नॉट नोइंग कि आपके साथ मुझे मौका मिलेगा, बोले यू विल बी इंटरव्यूइंग मी, ये तो सोने पे सुहागा हो गया।
0: आपकी लव मैरिज हुई आपने बताया जी, तो प्रपोज किसने किया, कैसे किया?
1: सर, वो मैंने ही किया था, कोइंसिडेंटली कह सकते हैं, वो अप्रैल फूल्स वाले दिन किया था।
0: स्टोरी कैसे शुरू हुई थोड़ा सा बताइए।
1: ये शुरुआत सर मेरी ही कह सकते हैं, कनाडा में ऑन वैलेंटाइंस डे स्पेशल ये पूरी कहानी एयर भी की गई थी, 2011 या 12 की बात है। तो गुड पार्ट इज के हमारी फैमिलीज में कभी ऐसा था नहीं कि इंटरकास्ट की कोई प्रॉब्लम हो, बट प्रॉब्लम ये थी मेरी फैमिली में माय पेरेंट्स को कि अभी तू कुछ बना तो है नहीं, तू शादी की पहले बात कर रहा है। शादी की पहले थॉट नहीं था, मैं ये नहीं कह सकता, मैं थोड़ा सा, माय वाइफ वाज वेरी सिंपल, आई वाज वेरी शरारती इन कॉलेज, तो एंड आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट एनी कैसे कुछ ऐसे रिलेशनशिप मुझे चाहिए या किसी के साथ मैं कमिट कर सकूं। तो वो क्लासिकल डांसर है, वो कथक डांसर है एंड वो टॉपर टाइप है, मुझे है कि फर्स्ट डिविजन में इंजीनियरिंग हो जाए उस टाइप से, एंड आई वॉज वेरी फोकस्ड अबाउट कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, बारिंग असाइड आई एम नॉट गोइंग टू परसू माई इंजीनियरिंग करियर। हम डांस में इकट्ठे मिले थे, शामक डामर की डांस क्लासेस थी, उस समय तो हम नॉर्मल दोस्त थे। फिर उसके बाद डांस इंडिया डांस के ऑडिशंस में दोबारा मिले, तो कोइंसिडेंटली हम दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बट फिर वहां से हमारी वो प्रेम कहानी शुरू हो गई, बस वो एक डेस्टिनी है। नाउ वी हैव 2 kids एंड वी हैव मैरिड फॉर 13 मोर इयर्स।
0: जी, तो आज जिस मकाम पर आप हैं, तो आपकी वाइफ का कितना सहयोग है आपकी जिंदगी में?
1: सो बहुत बड़ा सहयोग है, शी सैक्रिफाइज्ड हर थिंग्स एज वेल, क्योंकि वो दिल्ली बॉम्बे में जॉब कर रहे थे एंड वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, कई फैशन शोज भी कोरियोग्राफ करते थे एंड कथक

0: maybe, और इंडियन कंटेम्पररी डांसर भी हैं. करंटली शी इज अ डांस मूवमेंट थेरेपिस्ट एज वेल. वो एक छोड़ के आना, फिर वापस आकर, क्योंकि शुरुआत से मैं भी क्लियर था कि पेरेंट्स के साथ ही हमेशा रहना है, एंड शी ऑल्सो एक्नॉलेज फ्रॉम डे वन कि यस वी शुड स्टे विद पेरेंट्स ओनली. एंड एक वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था. प्लस वो कहते हैं ना कभी कभी मैं घर का जवाई बन जाता हूँ. तो so that way she has taken care so well, even जब tough times चलते हैं, जब पैसे नहीं भी थे, कई बार situations कुछ ऐसे आती हैं, तो बड़े calmly, maturely handle करना, वो आपको slowly समझ आता है. And yes, it's been a very special role.
1: सुप्रीत जी, जिस तरह से आपने अपनी जिंदगी के सफर की कहानी आगे बढ़ाई है, तो आपके करियर के दौरान कभी कोई ऐसा पल, कोई मुश्किल आई हो जिससे आपने अपना हौसला और ज्यादा बुलंद किया हो और ज्यादा मजबूती के साथ आप आगे बढ़े हो?
0: सर, कई बार हुआ है, चाहे वो जब जैसे क्रिकेट जब छोड़ा तब हुआ, या फिर जब IIT क्लियर नहीं हुआ, दोबारा नहीं हुआ, मेरे ग्रैंड मदर की डेथ हुई, उसके बाद फिर पापा का एक्सीडेंट हुआ, फिर जब कनाडा गया, वहां पे जब व्हेन यू फेस द वर्ल्ड और जब पैसे नहीं होते, एंड मुझे पता था मेरे फादर यहाँ घर बना रहे हैं तो मैं पैसे भी नहीं मांग सकता, तो पूरा साल $3,000 में निकालना, तो एक एक डॉलर के मील्स खाना, और कई बार एक दो दो डॉलर बचाने के लिए 3-3 किलोमीटर पैदल चलना, ये सब चीजें. बट वो दोज ऑल आर लर्निंग्स. ऐसे कई मौके आए हैं, फिर वापस आया. तो लाइफ में ना सर, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज देयर आर 4 स्टेजेस. पहली स्टेज आती है जब सब धुतकारते हैं, इससे तो कुछ नहीं होगा. फिर उसके बाद जब आप कुछ करने लगते हैं तो सलाहें बहुत मिलती हैं. फिर अगली स्टेज आती है कि जब थोड़ा सा आप कुछ करने लग जाते हैं तो थोड़े लोग जेलस होते हैं एंड विजिबल होता है. फिर एक ऐसी स्टेज भी आती है जो कभी कभी महसूस भी होती है कि जब वही लोग आपको कहते हैं यार आप बहुत इंस्पायर कर रहे हो, तो अच्छा लगता है वो सारी स्टेजेस का. बट द गुड पार्ट इस पूरी जर्नी में मुझे अध्यात्म ने बहुत स्ट्रांग बनाया, और उतना ही आई हैव रियलाइज कि ये बस वो यूनिवर्स का किया है, हम सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं और बस हो रही है और किया कुछ नहीं है. तो ऐसे कई मौके आए, पर उन मौकों ने मुझे भगवान के साथ ज्यादा जोड़ा है, वो यूनिवर्स के साथ बहुत जोड़ा है, जिससे शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है. देखा कि जरूरत ही नहीं पड़ती कहीं फाइट कुछ करने की, ये पता है जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं.
1: कभी कोई सेहत से रिलेटेड कोई इशू आपके साथ हुआ हो?
0: लगभग 2 साल पहले ऑलमोस्ट जब आई अवर्टेड अ पैरालिटिक अटैक, वो ऑलमोस्ट वो बहुत बुरी सिचुएशन थी जब मैं चल भी नहीं पा रहा था प्रॉपरली, एंड मैं वो एक डॉक्टर है उनको मैं बहुत ब्लेसिंग्स भी देता हूँ, और उससे मेरी लाइफस्टाइल चेंज हुई. लगभग उससे पहले जब 2022 में जब चिकनगुनिया हुआ, इट वॉज सो बैड, आई वॉज ऑन द बेड फॉर 3 मंथ्स एंड वो हील ही नहीं हुआ. खुद हेल्थ केयर में होते हुए इतना ध्यान नहीं दिया, हालांकि मैं बहुत ज्यादा फिटनेस में शुरू से था, बॉडी बिल्डिंग में भी था, सब चीजें था. बट उसके बाद समझ आई कि हेल्थ है तो सब है. मिलेट्स पे आया, सो आई एम प्योरली ऑन मिलेट्स डाइट. अपनी क्लीन डाइट पे आया, एक्सरसाइज पे, मेडिटेशन बढ़ाई, ये सब चीजें. तो यही मैं सबको कहता हूं कि लाइफ में सब करना चाहिए, पर सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर सेहत होगी, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, तो ये अन्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथ में, तो वहां काफी इंप्रूवमेंट की है. एंड अगेन एज हर सिचुएशन में फैमिली साथ में थी
1: जी. तो ये जो आपके साथ मुश्किल दौर आया, कितना बदलाव आया आपकी जिंदगी में, या आपका नजरिया जिंदगी के प्रति किस तरह से बदला?
0: सर, ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ा. उस समय जब मैं हिल भी नहीं पाता था, इनफैक्ट फिंगर्स भी नहीं मूव कर सकता था, वॉशरूम जाने तक 45 मिनट्स कई बार लग जाते थे. मैं इसलिए खाना बंद कर गया था कि डर होता था कि यार वॉशरूम जाना पड़ेगा, या पानी भी कम पीता था. तो वो ग्रैटिट्यूड आया कि मैं उंगलियां हिला सकता हूँ, एक्सरसाइज कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ. इनफैक्ट मेरे जॉ लॉक हो जाता था, वो बहुत अजीब लगता था उसको रब कर करके कई बार ओपन करना. फिर हर एक छोटी छोटी चीज, यू आर अलाइव, आपको एक दिन नया मिला है, आपकी फैमिली साथ में है. तो ये ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ी चीज आई है लाइफ में, कि आप कंप्लेन कम कर देते हो लाइफ में, क्रिबिंग खत्म हो जाती है, सिर्फ शुक्राना मोड पे चले जाते हो. तो वो एक बहुत अच्छा रहा है
1: जी. क्योंकि आप एक सफल उद्यमी भी हैं, आपका बिजनेस है, उसके बारे में थोड़ा बताइए. और आप पंजाब राज्य चैप्टर को चेयर भी आप शेयर करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए.
0: सर, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इंडिया का सबसे पुराना चैम्बर है, और मैं ऐसे ही एक्सीडेंटली ऑलमोस्ट 4 साल पहले उनके साथ जुड़ा था, और मुझे इतना बढ़िया लगा कि दुनिया का सबसे पुराना चैम्बर है और इतना काम हो रहा है. इट इज अ प्योर वॉलंटियर थिंग. एंड मैं फार्मा हेल्थ और वेलनेस कैन का कन्वीनर भी हूँ, बट अभी पंजाब के को चेयर का उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है. तो जिसमें हम कोशिश करते हैं कि राइट पॉलिसी एडवोकेसी में इंडस्ट्री को जो सपोर्ट है वो उनको प्रॉपर मिले, और दोनों तरफ एक ब्रिज बनता है कि चैम्बर्स. तो एक नई लर्निंग हुई जो बिजनेस को लेके. सर, मेरा थॉट कभी भी ऐसा नहीं था कि बिजनेस ही करना है, क्योंकि शुरू से माइंड में था कि एक्टर बनना है, सुपरस्टार बनना है, वो बोले थॉट रहता था हमेशा. बट एंटरप्रेन्योरशिप में एक चीज जो लेकर आई थी वो समय, मुझे ये था कि जो भी करना है ना वो अपने रूल से करना, और मैं सिर्फ एक ही रूल पे चलता हूँ.

0: है फेथ का प्रिंसिपल, वो पहले दिन से बाय डिफॉल्ट भगवान ने दिया था कि एफ फ्यूचरिस्टिक, ए अकाउंटेबल, आई इंटेग्रिटी, टी ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी, एच हाई क्वालिटी, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क, दैट्स इट। और वही प्रिंसिपल्स पे ही चलते हैं आज तक, कि यही कोशिश है कि अगर हेल्थ केयर में है तो कोशिश से पैसा कमाना ना हो, हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली सॉल्व करना हो, कि लोगों की हेल्थ कैसे बेटर की जा सके, कैसे उनको बेस्ट मेडिसिन दी जा सके बेस्ट प्राइसेस पे और बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दे सके हम। तो अब थॉट उस तरफ है, तो वो भी एक पैशन बन गया। हेल्थ केयर हैज बिकम अ पैशन फॉर मी, व्हिच आई नेवर थॉट वुड बिकम, क्योंकि मैं बचपन में जब पापा को जॉब करते देखता था, मैं कहता यार ये काम तो कभी नहीं करना, वो सुबह की बस पकड़ते हैं, रात को आते हैं, तो ये तो बहुत ही औखा काम है। बट ही हैड कॉन्फिडेंस, उन्होंने भी मुझे मौका दिया कि मैं अपना ही अलग तरीके से एक बिजनेस, सो नाउ वी हैव अ पैन इंडिया बिजनेस, सो लगभग वही 1100-1200 प्रोडक्ट्स आते हैं, अपनी खुद की ब्रांडिंग है, और मतलब मुझे मौका भी मिला है टेडेक्स टॉक्स करने का भी, और साथ में वी आर एबल टू ब्रिंग इन इनोवेशन नाउ, तो कई जगह हम अब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं, इंडिया से बाहर भी बिजनेस अब शुरुआत हो रही है, कनाडा में ऑफिस है, यूएस में भी हम ऑपरेशन शुरू करने का देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें हुई हैं। बट अल्टीमेट गोल अब यही है कि हेल्थ केयर में कुछ ऐसा करना है कि जो इम्पैक्टफुल हो, एंड भगवान मौके दे रहा है, एंड मैं उसका शुक्र गुजार हूँ।
1: जी बिल्कुल, आपसे बातचीत का सिलसिला यूं ही हम जारी रखेंगे, सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम के अगले एपिसोड में,
0: जरूर अगले एपिसोड पे करेंगे।
1: जी बिल्कुल। दोस्तों, सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में इस बार हमारे हम सफर हैं एक्टर, पॉडकास्टर और एक सफल उद्यमी श्री सुप्रीत सिंह। इनसे बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। अब आज का सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
3: अभी आपने सुना सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी है, ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। 6 वजन वाले ने, कुछ ही पलों में असी अपने दिल्ली केंद्र तो हिंदी समाचार रिलीज़ करांगी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत, स्वदेश

0: नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछा स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को परात 41 डिग्री चया मगावर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz ते आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आओ हम सुनते हैं फिल्म संगीत। सब तो पहला पेश है मीका सिंह की आवाज़ के विच फिल्म बॉडीगार्ड तो एक गीत।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤ ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖਬਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय परिसर में पौधारोपण के साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस अधिकारियों से नशे की लत के शिकार हो रहे युवाओं को नशों के जाल से बाहर निकालने का आह्वान किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सेक्टर 43 स्थित न्यायिक परिसर में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि तकनीक से आम लोगों की न्याय तक पहुंच आसान हुई है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के गंगवा गांव में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान मजदूर की मौत मामले में मुख्य सचिव और हिसार के पुलिस अधीक्षक को

0: नोटिस जारी किया। अब समाचार विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय परिसर में पौधारोपण के साथ पंजाब हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। उनके साथ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पौधारोपण किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल संवैधानिक दायित्व ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिकों से अधिक वृक्ष लगाकर तथा उनका संरक्षण कर देश के हरित आवरण को बढ़ाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता केवल लगाए गए पौधों की संख्या से नहीं बल्कि उनके संरक्षण, देखभाल और वृक्ष के रूप में विकसित होने से आंकी जाएगी। मानसून अवधि के दौरान चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के न्यायालय परिसरों, विधिक सेवा संस्थानों, न्यायिक आवासीय परिसरों तथा अन्य उपायुक्त सार्वजनिक स्थलों पर लाखों पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ के वन विभागों के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल देसी, फलदार, औषधीय एवं छायादार प्रजातियों के पौधों के रोपण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि समाज, संस्कार और मानवता की रक्षा का अभियान है। वे आज करनाल के मधुवन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में एक पुलिस एक संकल्प ड्रग्स मुक्त हरियाणा कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों व 600 से अधिक थाना प्रभारियों से सीधा संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशा अनेक परिवारों को बर्बाद कर रहा है और युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रहा है। ऐसे इसे जन भागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन का स्वरूप देना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से नशे की गर्त में जा रहे युवाओं को नशों से बाहर निकालने का आह्वान किया।
1: आपके कंधों पर केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी नहीं है बल्कि समाज की आत्मा की रक्षा करने का भी महान दायित्व आपके कंधों के ऊपर है। आप केवल अपराधियों का सामना नहीं करते हैं, आप हर दिन समाज को विश्वास की रक्षा भी करते हैं। साथियों, आपकी वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं है बल्कि सेवा, त्याग, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। मैं आज आप सभी से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हर बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ करके आगे बढ़े, परंतु कई बार व्यक्ति शौक के अंदर नशे के नजदीक चला जाता है। साथ ही उसको बचाने का हमने काम करना है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन भी किया। पत्रिका में विदेशों से प्रत्यर्पित कर भारत लाए गए अपराधियों सहित विभाग की प्रमुख उपलब्धियों और महत्वपूर्ण अभियानों का उल्लेख किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित न्यायिक परिसर में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अधिवक्ताओं और बाहर से आने वाले लोगों की गाड़ियों की पार्किंग के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया।
2: हम लोगों ने 4.5 एकड़ जमीन में लगभग 56 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके लगभग 1100 से अधिक गाड़ियां यहां पार्क हो सके सुविधा जुटाने का प्रयास किया। आने वाले रिटिकेंट को भी और हमारे सभी लॉयर पदों को भी उचित स्थान और सम्मान पूर्वक पार्किंग करने की जगह मिले उसके लिए प्रयास किया। और हमने यहाँ की हाईकोर्ट में भी 3.5 करोड़ रुपया खर्च करके ओपन पार्किंग प्लेस भी बनाया जिससे वहाँ भी ये सुविधाएं मिल सके। मैं सोचता हूँ कि पार्किंग की सुविधा हमने जुटा दी लेकिन इस पार्किंग का उपयोग सही ढंग से हो इसके लिए आपको चिंता करनी पड़ेगी।
0: श्री कटारिया ने अपने संबोधन में नए आपराधिक कानूनों का जिक्र भी किया और त्वरित न्याय पर बल दिया।
2: एनडीबीएस एक्ट में सबसे ज्यादा सजा का परसेंटेज अगर कहीं बना है तो 85% आज की तारीख में चंडीगढ़ का और पंजाब का बना है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि न्याय समय पर भी मिले, न्याय जो है न्याय की तरह सीखे। तो मैं सोचता हूँ इस व्यक्ति से आपसे सर्वोच्च व्यक्ति और कोई यहाँ नहीं हो सकता। आप वहाँ बैठ करके हमारी मदद कर सकते हैं, करें ताकि हम इस क्षेत्र के लोगों को जल्दी और सस्ता न्याय दिला सकें।

0: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पार्किंग को लेकर राज्यपाल का आभार व्यक्त किया और पार्किंग की व्यवस्था को लेकर उनके सुझाव का अनुमोदन किया।
1: ये लॉयर्स की और लिटिगेंट्स की दोनों की रिक्वायरमेंट थी, उनके लिए पार्किंग का कोई बहुत अच्छा स्पेस अवेलेबल नहीं था, उसका एक बहुत ही अच्छा सुंदर इन्होंने निदान किया है और मैं इनकी उस बात का भी पूरा पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ, जिसमें उन्होंने वकील साहबान से ये अपील किया कि आप उसको ठीक ढंग से इसका सदुपयोग कीजिए, ठीक ढंग से पार्किंग कीजिए और जो है कि फैसिलिटी उनको दी गई है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज चंडीगढ़ में कहा कि भारतीय न्यायपालिका प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी का उपयोग न्याय तक पहुंच को मजबूत करता है, लेकिन एआई का इस्तेमाल वास्तविक फैसले देने के लिए नहीं बल्कि केवल प्रतिक्रियात्मक सहायता जैसे कि मामले के प्रबंधन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर एआई के उपयोग से जुड़े स्पष्ट नियम और दिशा निर्देश अपलोड किए गए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि तकनीक अब संवैधानिक साधन बन चुका है, इससे न्याय तक पहुंच आसान हुई है।
1: जो आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडियन जुडिशरी वर्ल्ड में नंबर वन पर टेक्नोलॉजी को यूज करने में, गरीब आदमी को, गांव के आदमी को, दूर दराज के आदमी को अपने हाईकोर्ट में जाना उसको लगता था बहुत दूर है। अब टेक्नोलॉजी ने उस ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को डिसमेंटल कर दिया है। आप अपने शहर में, अपने गाँव में, अपने वहीं से बैठ करके केस को फाइल कर सकते हैं, वहीं से आपका वकील उसको बहस कर सकता है और आप वहीं बैठे अपने केस की कहाँ पे क्या स्थिति है, कौन सी अगली तारीख लगी है, वो सारा विवरण ले सकते हैं।
0: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हरियाणा के गंगवा गांव में एक सीवेज उपचार संयंत्र के टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैसों के कारण एक मजदूर की मौत और एक के घायल होने के मामले में हरियाणा के मुख्य सचिव और हिसार के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। खबरों के अनुसार मृतक मजदूर के परिवार ने ठेकेदार और संयंत्र प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के टैंक में दाखिल हुए थे। आयोग ने मीडिया की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को गलत बताया है जिनमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निवेश प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इन दावों में कहा गया है कि 22,000 रुपये के शुरुआती निवेश पर नागरिकों को हर महीने 25 लाख रुपये की कमाई की गारंटी दी जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह वीडियो फर्जी है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया है। यूनिट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय परिसर में पौधारोपण के साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस अधिकारियों से नशे की लत के शिकार हो रहे युवाओं को नशों के जाल से बाहर निकालने का आह्वान किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सेक्टर 43 स्थित न्यायिक परिसर में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। केंद्रीय राज मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशनरां दियां शिकायतां दा निपटारा करन दे नाल नाल पेंशनरां दियां इच्छावां ते चिंतावां नूं दूर करन ते ध्यान केंद्रित करना चाहिए है। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने बिरधा सुरक्षा ते निरंतर रहनयोग विकास नूं उत्साहित करने लई पंजाब हरियाणा ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच रुख लाउण दी मुहिम की शुरुआत की थी। पंजाब भर विच वख-वख थावां ते अज लोक अदालतां लाईआं गईआं। मौसम विभाग ने 20 जुलाई तो 22 जुलाई तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों विच भारी तो बेहद भारी मीह पैण संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पी वी सिंधु टोक्यो विच जापान ओपन बैडमिंटन

0: में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री जरीना वहाब ने।
1: प्यारे फौजी भाइयों को मेरा आदाब। आज मुझे आपके साथ बात करते हुए इतनी खुशी हो रही है, उस खुशी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते।

ये 1965 की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, बहुत छोटी थी। तब से मुझे ये प्रोग्राम सुनने का इतना शौक था, ये प्रोग्राम मैं सुनती थी। और कभी मुझे ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि मुझे सेम प्रोग्राम आपके सामने मुझे कभी बोलने का मौका मिलेगा। आज ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, पहले आप ये गाना सुनिए, बाकी की बात मैं आपको बताऊँगी।

फौजी भाइयों, अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। बचपन से मैं बहुत शरीर थी, मेरे घर वाले भी बहुत तंग आ चुके थे मुझसे। मुझसे नहीं, मतलब मेरे बहनें भी थी, वो भी बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैं बचपन से डांस सीखती थी, हमारी तो स्कूल 4:30 बजे तक होती थी, फिर वहाँ से मैं डांस सीखने के लिए जाती थी। और फिल्में देखने का मुझे इतना ज़्यादा शौक था, क्योंकि घर वाले तो इस बात से बहुत नाराज़ थे कि हम लोग फिल्में देखते हैं, इसलिए हमको बहुत मना करते थे फिल्में देखने के लिए। एक दिन हम लोग स्कूल नहीं गए, वहाँ से हम लोग सीधा पिक्चर देखने के लिए चले गए, क्योंकि घर में तो किसी को मालूम नहीं था। कोई दोस्त हमारा देख लिया और जाके घर में मम्मी को बता दिया। मतलब पिक्चर देख के हम लोग जैसे घर आए तो मम्मी बहुत नाराज़ होकर बाहर खड़ी हुई थी। मम्मी ने पूछा, कहाँ से आ रहे हैं तुम लोग? तो हम लोगों ने बोला, हम तो स्कूल से आ रहे हैं। स्कूल से आ रहे हैं, अच्छा चलो अंदर। और अंदर जाके वो जो धुलाई हुई हमारी, आज तक मुझे याद आता तो इतनी हंसी आती है मुझे, क्योंकि इतनी मैं पागल थी फिल्में देखने के लिए। वो शौक तो खैर अभी तक सिलसिला जारी है, अभी भी मैं बहुत फिल्में देखती हूँ। जब भी मेरी शूटिंग नहीं होती है तो मैं फिल्में बहुत देखती हूँ।

लेकिन इस वजह से मेरी पढ़ाई जो थी वो बिल्कुल अधूरी रह गई। आज भी मेरी पढ़ाई के लिए मुझे बहुत अफसोस होता है कि उसको मैंने पूरा नहीं किया। लेकिन मैं हमेशा यही कहूंगी कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको कभी मेरे जैसा नहीं करना चाहिए। क्लास छोड़ के फिल्में देखने जाएं और पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। वैसे करके मैंने तो अपनी पूरी पढ़ाई खराब कर ली, अभी जाके मुझे बहुत अफसोस होता है। अच्छा ये गाना सुनिए अभी।

फौजी भाइयों, स्कूल से निकलकर मैं सीधा पूना फिल्म इंस्टीट्यूट आ पहुंची और वहां पे एक्टिंग के जो भी बुनियादी बातें थी वो हमको सिखाई गई। मतलब किस तरह से कैमरा आप फेस करते हैं, किस तरह से आपको डायलॉग बोलना है। लेकिन इंस्टीट्यूट आके मुझे वहाँ महसूस हुआ कि मैं काम भी कर सकती हूँ। इसका मतलब मैं बचपन से फिल्मों में डांस करना चाहती थी, क्योंकि मुझे डांस बचपन से मैं सीख चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता कि मैं पहले डांसर हूँ फिर बाद में एक्ट्रेस हूँ। तो इंस्टीट्यूट आके सब लोग, जैसे मेरे साथी थे शबान आजमी, शैलेंद्र सिंह, जो ये हमारे बैच के थे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ हम लोग काम करते करते और मुझे देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि मैं काम भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर वहाँ पे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में हमारा कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं जब बॉम्बे आई, तो वहाँ जैसे जया जी हैं, नहीं जया जी के बारे में मैं आपको इस गाने के बाद में बताऊंगी, पहले गाना सुनिए।

0: जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
3: देव दर्शन धूप।
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
3: देव दर्शन धूप।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
6: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
5: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
6: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयां लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
5: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
6: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
5: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी वहां पे शत्रुजी ने हमारा एग्जाम लिया था, डिप्लोमा एग्जाम। तो उस जमाने से मैं शत्रुजी को मैं जानती थी और मैंने शत्रुजी से एक दिन कहा था मुझे आपके साथ फिल्म करना है। उसके बाद जब मैं बॉम्बे आई थी तो शत्रुजी एक फिल्म मेरे साथ करने के लिए राजी हो गए। उसके बाद हमारी फिल्म शुरू हुई थी अनोखा, और शूटिंग के दरमियान वो इतना हंसाते थे। अच्छा, गाना सुनिए।

फौजी भाइयों, जब मैं अनोखा की शूटिंग करती थी उन दिनों मैं बिल्कुल नहीं आई थी इंडस्ट्री में, और मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि किस टाइम पे आना है किस टाइम पे जाना है। और डायरेक्टर साहब ने कहा कि भाई तुम्हारी कल शूटिंग 9 बजे है, तो जना मैं तो 9 बजे ठीक पहुंच गई थी। लेकिन बाद में वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि 9 बजे विद मेकअप तैयार रहना था, और मैंने जब मेकअप किया, हेयर ड्रेसिंग की, उसके बाद जब मैं सेट पे पहुंची तो 11 बज गए थे। लेकिन मेरे लिए सब लोग वेट कर रहे थे वहां पे, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। वहां जाने के बाद जुगल जी ने मुझे बहुत डांटा कि तुमने ऐसा किया, ये बहुत बुरा है। तो एक सेकंड के लिए मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा सब लोगों के सामने डांट दिया। जब जाके मैंने सोचा इस बात पे मैंने गौर किया तो सच्ची ये गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी वजह से 30-40 जो भी लेबर बैठे हुए थे और वर्कर्स थे, कैमरामैन, डायरेक्टर, ये सब लोग मेरे लिए वेट कर रहे थे, और मेरी वजह से 3-4 घंटे वेस्ट हो गए। इसके बाद मैंने इस बात को कभी रिपीट नहीं किया, शूटिंग पे कभी मैं देर नहीं गई। और अगर उस दिन वो मुझे नहीं डांटते तो देर से आने की आदत मुझ में आ जाती। तो इसके लिए मैं जुगल जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक गाना मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है टाइम ज़्यादा नहीं है। इसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी बातें और बताऊँगी।

0: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री जरीना वहाब ने। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का शेष भाग।
1: फौजी भाइयों, दिलीप साहब, मेरे मतलब दिलीप कुमार साहब, जितना फिल्म देखने वालों के चाहते हैं उतना ही फिल्म बनाने वाले और काम करने वालों के भी चाहते हैं। और दिलीप साहब ऐसे इंसान हैं जो उनको कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इनको नहीं पसंद करता हूँ। और वैसे ही दिलीप कुमार साहब के मैं बचपन से मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ और मुझे वो बहुत अच्छे लगते मेरे, और बहुत तमन्ना थी कि उनके साथ कभी बात करूँ, उनको उन्हें देखूँ।

फौजी भाइयों, अभी मैं आपको एक मजेदार बात सुनाती हूँ। इंसान की जिंदगी में हमेशा दो ख्वाहिशें होती हैं, या तो आप ये करना चाहो या दूसरा। ऐसे मेरे जिंदगी में भी दो चॉइस थी, एक तो एक्ट्रेस बनने का या एयर होस्टेस बनने का। क्योंकि मुझे मालूम था एक्ट्रेस बनने का शौक इतना जल्दी मेरा पूरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है एक्ट्रेस बनने के लिए, काफी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एयर होस्टेस बन जाए। और एक दिन मैंने अप्लाई किया था एयर होस्टेस के लिए और मैंने अपनी फोटोज भेजी थी, तो वो लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। जनाब, हम पहुंच गए इंटरव्यू के लिए। तो जब मैं अंदर गई थी तो वहां पे चार औरतें और चार आदमी बैठे हुए थे, और जैसे मैं जाके पहुंची और मैं बैठ गई वहां पे, तो वो लोगों ने मुझसे अंग्रेजी में तरह तरह के सवाल एक से एक पूछने लगे वो लोग, और मैं चुपचाप मैं उनका मुंह देखती रही। आधा घंटा गुजर गया, तो उसके बाद एक जनाब पूछने लगे, भाई आपको बोलना तो आता है? तो मैंने कहा मुझे सिर्फ हिंदुस्तानी बोलना आता है। फौजी भाइयों, असली बात तो ये थी कि मुझे अंग्रेजी बिल्कुल बोलनी नहीं आती थी। फिर उसके बाद मैं घर आई, घर आके मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अंग्रेजी जरूर सीखना है। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद मैं अंग्रेजी बोलना सीख गई। वैसे अभी मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ। तो उसके बाद अंग्रेजी मैं सीख तो गई, लेकिन मैं ज्यादा हिंदुस्तानी बोलने में मुझे ज्यादा मजा आता है, और इस बात का मुझे बहुत फक्र है कि मैं भी खुद एक हिंदुस्तानी हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छा गाना सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है।

जैसा कि फौजी भाइयों, अभी तो काफी वक्त हो चुका है, इसलिए मैं अपना प्रोग्राम खत्म करना चाहती हूँ। लेकिन जाने के पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा गाना सुनाती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़।

फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया जानी मानी अभिनेत्री जरीना वहाब ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।

0: जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन।
1: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
0: मीना कुमारी।
2: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
0: जीवन।
3: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था।
0: देव आनंद।
4: फौजी भाइयों, आपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
0: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला। हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: श्रोताओं, हवा महल के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विश्वास का तीसरा और अंतिम भाग। वाचन स्वर है अमरकांत दुबे का।
2: अब तक आपने सुना बंबई के सभ्य समाज की एक रसूखदार प्रभावशाली महिला मिस राधिका जोशी, जो कि बंबई के गवर्नर के साथ अपने निजी संबंधों के चलते बंबई पर लगभग राज किया करती थी, उसे भरी सभा में एक स्थानीय नेता आप्टे बुरी तरह से अपमानित कर देता है। उससे अपने अपमान का बदला लेने के लिए मिस जोशी उसके घर जाती हैं। वहां पर आप्टे के सीधे सरल स्वभाव और सादे जीवन को देखकर वो उससे प्रभावित हो जाती है। यहाँ आप्टे को भी अपनी इस भूल का एहसास होता है कि मिस जोशी के विषय में पूरी सच्चाई जाने बिना उसने उसे भरी सभा में अपमानित किया। अपने इस अपराध के लिए आप्टे मिस जोशी से क्षमा मांगता है। आप्टे की सादगी और उच्च विचारों को साक्षात देखकर मिस जोशी उससे बदला लेने की बात भूलकर क्षमा मांगने के लिए उसके पैरों में गिर जाती हैं। अब सुनिए आगे। मिस जोशी उनके पैरों पर गिर पड़ी। आप्टे ने उसे उठा लिया और बोले, मिस जोशी, ईश्वर के लिए मुझे लज्जित न कीजिए। मिस जोशी ने गदगद कंठ से कहा,
3: आप इन दुष्टों के हाथ से मेरा उद्धार कीजिए। मुझे इस योग्य बनाइए कि मैं आपकी विश्वास पात्री बन सकूं। ईश्वर साक्षी है कि मुझे कभी कभी अपनी दशा पर कितना दुख होता है। मैं बार बार चेष्टा करती हूं कि अपनी दशा सुधारूं, इस विलासिता के जाल को तोड़ दूं जो मेरी आत्मा को चारों तरफ से जकड़े हुए। मेरा पालन पोषण जिस ढंग से हुआ उसका यह परिणाम होना स्वाभाविक।

मुताबिक मालूम होता है। मेरी उच्च शिक्षा ने गृहिणी जीवन से मेरे मन में घृणा पैदा कर दी। मुझे किसी पुरुष के अधीन रहने का विचार अस्वाभाविक जान पड़ता था। मैं पुरुषों की भांति स्वतंत्र रहना चाहती थी। क्यों किसी की पाबंद होकर रहूं? क्यों अपनी इच्छाओं को किसी व्यक्ति के सांचे में ढालूं? क्यों किसी को यह कहने का अधिकार दूं कि तुमने यह क्यों किया, वह क्यों किया? अपने माता पिता की आलोचना करना मेरे लिए उचित नहीं। ईश्वर उन्हें सदगति दे, उनकी राय किसी बात पर मुझसे न मिलती थी। पिता विद्वान थे, माता के लिए काला अक्षर भैंस बराबर। उनमें रात दिन वाद विवाद होता रहता था। अपने घर की अशांति देखकर मुझे विवाह से और भी घृणा हो गई। सबसे बड़ा असर मुझ पर मेरे कॉलेज की लेडी प्रिंसिपल का हुआ, जो स्वयं अविवाहिता थी। मेरा तो अब ये विचार है कि युवकों की शिक्षा का भार केवल आदर्श चरित्रों पर रखना चाहिए। विलास मिरत, कॉलेजों के शौकीन प्रोफेसर विद्यार्थियों पर कोई अच्छा असर नहीं डाल सकते। मैं जिस संसार में हूं उसकी जलवायु ही दूषित है। वहां मुझे सभी कीचड़ में लतपत देखना चाहते हैं। मेरे विलासा सख्त रहने में ही उनका स्वार्थ है। आप वो पहले आदमी है जिसने मुझ पर विश्वास किया है, जिसने मेरे साथ निष्कपट व्यवहार किया है। ईश्वर के लिए आप मुझे भूल न जाइएगा। आपटे ने मिस जोशी की ओर वेदनापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, अगर मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मिस जोशी, आपकी आत्मा सुंदर और पवित्र है, केवल परिस्थितियों ने उसे कोहरे की भांति ढक लिया है। अब विवेक का सूर्य उदय होगा। ईश्वर ने चाहा तो कोहरा भी फट जाएगा, लेकिन सबसे पहले उन परिस्थितियों का त्याग करने को तैयार हो जाइए। मिस जोशी ने कहा, यही आपको करना होगा। आपटे ने चुभती हुई निगाहों से देखकर कहा, वैद्य रोगी को जबरदस्ती दवा पिलाता है। मिस जोशी ने कहा, मैं सब कुछ करूंगी, मैं कड़वी से कड़वी दवा पीऊंगी यदि आप पिलाएंगे। कल आप मेरे घर आने की कृपा करेंगे? शाम को? अवश्य अवश्य आऊंगा। मिस जोशी ने विदा लेते हुए फिर कहा, भूलिएगा नहीं, मैं आपकी राह देखती रहूंगी। अपने इस रक्षक को भी लाइएगा। ये कहकर उसने पालक को गोद में उठाया और गले से लगाकर बाहर निकल गई। गर्व के मारे उसके पांव जमीन पर न पड़ते थे, मालूम होता था हवा में उड़ी जा रही थी। प्यास से तड़पते हुए मनुष्य को नदी का तट नजर आने लगा था। दूसरे दिन प्रातःकाल मिस जोशी ने मेहमानों के नाम दावती कार्ड भेजे और उत्सव मनाने की तैयारियां करने लगी। मिस्टर आपटे के सम्मान में पार्टी दी जा रही थी। मिस्टर जोहरी ने कार्ड देखा तो मुस्कुराए। अब इस जाल से बचकर कहां जाएंगे? मिस जोशी ने उसे फंसाने की यह अच्छी तरकीब निकाली। 4 ही बजे से मेहमान आने लगे। नगर के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े विद्वान, प्रधान समाचार पत्रों के संपादक अपनी अपनी महिलाओं के साथ आने लगे। मिस जोशी ने आज अपने अच्छे से अच्छे वस्त्र और आभूषण निकाले हुए थे। जिधर निकल जाती थी मालूम होता था अरुण प्रकाश की छटा चली आ रही है। भवन में चारों तरफ से सुगंध की लपटें आ रही थीं और मधुर संगीत की ध्वनि हवा में गूंज रही थी। 5 बजते-बजते मिस्टर जोहरी आ पहुंचे और मिस जोशी से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर बोले, जी चाहता है तुम्हारा हाथ चूम लो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये महाशय तुम्हारे पंजे से नहीं निकल सकते। सहसा आपटे लोहार के बालक की उंगली पकड़े हुए भवन में दाखिल हुए। वो पूरे फैशनेबल रईस बने हुए थे। बालक भी किसी रईस का लड़का मालूम होता था। आज आपटे को देखकर लोगों को विदित हुआ कि वो कितना सुंदर सजीला आदमी है। मुख से शौर्य टपक रहा था, पोर से शिष्टता झलकती थी। मालूम होता था वो इसी समाज में पला है। लोग देख रहे थे कि वो कहीं चूके और तालियां बजाएं, पर आपटे मंजे हुए खिलाड़ी की भांति जो कदम उठाता था वो सदा हुआ।

जो हाथ दिखलाता था वो जमा हुआ। मिस जोशी उसकी वाक चतुराई पर फूल उठती थी। सहसा मिस जोशी अपने सोने के कमरे में गईं और अपने सारे वस्त्राभूषण उतार फेंके। उसके मुख से शुभ्र संकल्प का तेज निकल रहा था, मानो किसी देवता ने उसे वरदान दिया हो। उसने सजे हुए कमरे को घृणा के नेत्रों से देखा, अपने आभूषणों को पैर से ठुकरा दिया और एक मोटी साफ साड़ी पहनकर बाहर निकल आई। उसे इस नए वेश में देखकर सभी चकित हो गए। काया पलट कैसी? सहसा किसी की आंखों को विश्वास ना आया, किंतु मिस्टर जौहरी बगले बजाने लगे। मिस जोशी ने इसे फंसाने के लिए ये कोई नया स्वांग रचा है। मित्रों, आपको याद है परसों महाशय आपटे ने मुझे कितनी गालियां दी थीं? ये महाशय खड़े हैं, आज मैं इन्हें उस दुर्व्यवहार का दंड देना चाहती हूं। मैं कल इनके मकान पर जाकर इनके जीवन के सारे गुप्त रहस्यों को जान आई। मैं उन रहस्यों के खोलने में अब विलंब न करूंगी। आप लोग अधीर हो रहे होंगे, अब मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं कि ये महाशय पक्के विद्रोही हैं। मिस्टर जौहरी ने ताली बजाई और तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। मिस जोशी ने कहा, लेकिन राज के द्रोही नहीं, अन्याय के द्रोही, दमन के द्रोही, अभिमान के द्रोही। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मिस जोशी रुकी नहीं। महाशय आपटे ने गुप्त रूप से शस्त्र जमा किए हैं और गुप्त रूप से हत्याएं की हैं। मिस्टर जौहरी ने तालियां बजाई और तालियों का दोंगड़ा फिर बरस गया। मिस जोशी फिर बोली, लेकिन किसकी हत्या? दुख की, दरिद्रता की, प्रजा के कष्टों की, हठधर्मी की और अपने स्वार्थ की। चारों ओर फिर सन्नाटा छा गया। मिस जोशी फिर बोली, महाराज आपटे ने गुप्त रूप से डकैतियां की हैं और कर रहे हैं। अब की किसी ने ताली न बजाई। लोग सुनना चाहते थे कि देखें आगे क्या कहती हैं। उन्होंने मुझ पर भी हाथ साफ किया है, मेरा सब कुछ अपहरण कर लिया है, यहां तक कि अब मैं निराधार हूं और उनके चरणों के सिवा मेरे लिए कोई आश्रय नहीं। प्राणाधार, इस अबला को अपने चरणों में स्थान दीजिए, इसे डूबने से बचाइए। मैं जानती हूं आप मुझे निराश न करेंगे। ये कहते कहते वो जाकर आपटे के चरणों पर गिर पड़ी और सारी मंडली स्तंभित रह गई। एक सप्ताह गुजर चुका था। आपटे पुलिस की हिरासत में थे। सारे प्रांत में हलचल मची हुई थी। रात के 9 बज गए थे। मिस्टर जौहरी राजभवन में मेज पर बैठे हुए सोच रहे थे कि मिस जोशी को क्यों कर वापस लाएं। उसी दिन से उनकी छाती पर सांप लौट रहा था। उसकी सूरत एक क्षण के लिए भी आंखों से न उतरती थी। वो सोच रहे थे, इसने मेरे साथ ऐसी दगा की, मैंने इसके लिए क्या कुछ न किया, इसकी कौन सी ऐसी इच्छा थी जो मैंने पूरी नहीं की, और इसने मुझसे बेवफाई की। नहीं, कभी नहीं, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सहसा कमरे का द्वार खुला और मिस जोशी ने प्रवेश किया। मिस्टर जौहरी हकबकाकर कुर्सी से उठकर खड़े हुए और सोचकर कि शायद मिस जोशी उधर से निराश होकर मेरे पास आई हैं, कुछ रूखे लेकिन नम्र भाव से बोले, आओ आओ बाला, तुम्हारी ही याद में बैठा था। मिस जोशी ने कहा, आप केवल जबान से कहते हैं। मिस्टर जौहरी बोले, क्या दिल चीर कर दिखाऊं? मिस जोशी ने कहा, प्रेम प्रतिकार नहीं करता, आपने मेरे स्वामी को हिरासत में डाल रखा है, यह प्रेम है क्या? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? अगर आप समझ रहे हैं कि इन शक्तियों के डर से मैं आपके शरण में आ जाऊंगी तो यह आपका भ्रम है। आपको अख्तियार है कि आपटे को काले पानी भेज दें, फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर ना होगा। मैं उनको अपना स्वामी समझती हूं, उन्होंने अपनी विशाल उदारता से मेरा उद्धार किया है। आप मुझे विषय के फंदों में फंसाते थे, मेरी आत्मा को कलुषित करते थे। कभी आपको यह ख्याल आया कि इसकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी? आप मुझे आत्मशून्य समझते थे, लेकिन इस देव पुरुष ने अपनी निर्मल स्वच्छ आत्मा के आकर्षण से मुझे पहली

0: ये मुलाकात में खींच लिया। मुझे एक सच्ची आस्था की जरूरत थी, वो मुझे मिल गई। मैं उनके वियोग में चाहे प्राण दे दूं, पर आपके काम नहीं आ सकती। मिस्टर जोहरी ने कहा, मिस जोशी, प्रेम उदार नहीं होता, क्षमाशील नहीं होता। मेरे लिए तुम सर्वस्व हो जब तक मैं समझता हूं कि तुम मेरी हो। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मुझे इसकी क्या चिंता कि तुम किस दशा में हो। मिस जोशी ने कहा, तो यह आपका अंतिम निश्चय है? मिस्टर जोहरी बोले, अगर मैं कह दूं कि हाँ तो? मिस जोशी ने पिस्तौल निकालकर कहा, तो पहले आपकी लाश जमीन पर पड़ी होगी और आपके बाद मेरी। ये कहकर मिस जोशी ने जोहरी की तरफ पिस्तौल तान दी। जोहरी कुर्सी से उठ खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले, क्या तुम मेरे लिए कभी इतना साहस कर सकती थी? कदापि नहीं। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं तुम्हें नहीं पा सकता। जाओ जाओ, तुम्हारा आपटे तुम्हें मुबारक हो। उस पर से अभियोग उठा लिया जाएगा। पवित्र प्रेम ही में ये साहस है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है। आपटे ने मुझे प्रेम के क्षेत्र में नहीं, राजनीति के क्षेत्र में भी परास्त कर दिया। सच्चा आदमी एक मुलाकात में ही जीवन को बदल सकता है, आत्मा को जगा सकता है, अज्ञान को मिटाकर प्रकाश की ज्योति फैला सकता है। यह आज सिद्ध हो गया।
1: सुनो कहानी के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विश्वास का तीसरा और अंतिम भाग। वाचन स्वर था अमरकांत दुबे का। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
2: सुनो कहानी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं फिल्म धड़कन का दो गाना, युगल स्वर अलका याग्निक और सोनू निगम के, गीतकार समीर हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है जान, गीत रचना आनंद बख्शी की और धुन आनंद मिलिंद की।

0: सकती है
1: बस एक छोटे से कदम के साथ। प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है। सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे

0: इस अंतराल के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए अब सुनते हैं जतिन ललित के संगीत निर्देशन में समीर के बोल, युगल स्वर आशा भोंसले और उदित नारायण के हैं। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
0: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: हम आपको बताना चाहेंगे कि विशेष जयमाला कार्यक्रम में कल संध्या 7 बजे आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी देवैया पर केंद्रित कार्यक्रम। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कांबले। याद रखें कल संध्या 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी देवैया पर केंद्रित होगी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम रिफ्यूजी, स्वर सोनू निगम और अलका याग्निक की। इसे जावेद अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ

0: सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडम्बर मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीबी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 AD को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म।

0: फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद के निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
4: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
1: हुरमुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले दो दिन में

डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही PV सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज

0: समागम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਕੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2: ਰਾਤਰੀ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਹੈ, ਲੀਜੀਏ ਸੁਣੀਏ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਪਕੇ ਲਈ। ਸਭੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੇਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਸੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था कॉल गर्ल। गीतकार थे नक्श लायलपुरी और संगीत दिया था सपन जगमोहन ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम याराना, स्वर एक बार फिर किशोर कुमार का, गीत रचना अनजान की और धुन राजेश रोशन की है।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में लिया है। फिल्म का नाम है नाखुदा। गीत रचना निदा फाजली की और धुन बनाई है खयाम साहब ने।

0: किशोर कुमार और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था स्वर्ग नर्क।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में आप सुनिए राहुल देव बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज़ी, फिल्म का नाम शरीफ बदमाश।

किशोर कुमार और आशा भोंसले को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था शरीफ बदमाश। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज फिल्म ब्लैकमेल के लिए, शब्दकार राजेंद्र कृष्ण और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म यकीन का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी आवाज जिसके बारे में गुलजार साहब ने कहा था, उनकी आवाज ऐसी है जैसे किसी पहाड़ी से टकराने वाली बारिश की बूंदें, वो तन मन को तरोताजा कर देती हैं। उनकी मखमली आवाज आत्मा तक सीधे पहुंचती है।

कम होंगी, बल्कि उनकी गिटार की बातें ज्यादा होंगी जो उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मी गानों में बजाया। यानी ये तय है कि आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी प्रतिभा की बातें हो रही हैं जो एक बेहतरीन गायक थे, लेकिन उसके साथ साथ थे एक बेमिसाल गिटार वादक, और उनके गिटार से सजे हैं फिल्मी दुनिया के कुछ बेमिसाल गाने। ये शायद पहली बार हो रहा है कि आज के फनकार कार्यक्रम में हम इस गायक की गायकी की प्रतिभा की बातें कम करें और उनके गिटार की बातें ज्यादा करें। आज के फनकार आज केंद्रित है

भूपेंद्र सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने गायक और संगीतकार थे, उनका नाम था नत्था सिंह। उन्होंने भूपेंद्र को गाने की और गिटार की तालीम बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। बचपन के इन दिनों में ही भूपेंद्र की दिलचस्पी गजल गाने में भी हो गई थी और वो आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गए थे। फिर ये हुआ कि संगीतकार मदन मोहन एक बार दिल्ली आए। जाने माने संगीतकार सतीश भाटिया के घर पर एक पार्टी दी गई और इस पार्टी में मदन मोहन ने भूपेंद्र सिंह को सुना। मदन जी ने कहा कि तुम्हें मुंबई आना चाहिए और वहां गायकी में अपनी तकदीर आजमानी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद भूपेंद्र को चेतन आनंद ने बुलाया फिल्म हकीकत के इस गाने को गाने के लिए। जरा सोचिए कि एक दुबला पतला नौजवान और उस स्टूडियो में थे कितने सारे लेजेंड, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद और इन सब के बीच भूपेंद्र

0: मुझे।
1: भूपिंदर सिंह वैसे तो स्पेनिश गिटार बजाया करते थे, लेकिन मुंबई में गिटार की और ज्यादा बारीकियां उन्होंने सीखी भारतीय फिल्म उद्योग के बेमिसाल गिटार वादक भानु गुप्ता से, जो आरडी बर्मन की टीम का हिस्सा थे। तकरीबन 2 बरस तक भूपिंदर सिंह भानु गुप्ता से सीखते रहे। फिर एक इत्तेफाक हुआ, भूपिंदर सिंह मुंबई में एक 12 स्ट्रिंग गिटार खरीद रहे थे। उनके साथ गए थे फिल्म उद्योग के एक और गिटारिस्ट सुनील कौशिक। इत्तेफाकन भूपिंदर सिंह की मुलाकात आरडी बर्मन से हुई, और उसके बाद आरडी बर्मन से भूपिंदर का जो नाता बना, वो आरडी बर्मन के इस दुनिया से जाने यानी 1994 तक कायम रहा। पंचम के लिए भूपिंदर सिंह ने कई गानों में बेमिसाल गिटार बजाया है, उसकी बातें करेंगे बाद में। लेकिन पहले आपको बताएं कि हकीकत आने के बाद फिल्म आखिरी खत आई 1966 में। इस फिल्म में भूपिंदर सिंह ने न केवल एक गाना गाया, बल्कि इस गाने को उन्हीं पर फिल्माया भी गया।

सन 1968 में भूपेंद्र सिंह ने पहली बार अपनी गजलों का एक ईपी रिलीज किया। ईपी यानी छोटा वाला रिकॉर्ड। इसमें उन्होंने गालिब और प्रेम जलंधरी को गाया था। इसके बाद भूपेंद्र सिंह का दूसरा एल्बम आया, जिसमें उन्होंने गजलों में स्पेनिश गिटार, बास और ड्रम्स का इस्तेमाल किया। और फिर गुलजार साहब के साथ वो जो शायर था, गजलों के पूरे स्ट्रक्चर को भूपेंद्र सिंह ने पूरी तरह से बदल दिया। बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही प्रयोगवादी एल्बम था वो जो शायर था। पर आज भूपेंद्र की गायकी से ज्यादा बातें होने वाली हैं भूपेंद्र के गिटार की। पंचम के साथ भूपेंद्र के गिटार की तरंगें अब आपको सुनाई देंगी। सबसे पहले 12 स्ट्रिंग गिटार का जादू, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा।

बातें हो रही हैं उन गानों की जिनमें संगीतकार आर डी बर्मन के निर्देशन में भूपिंदर सिंह ने बजाया गिटार। फिल्म का नाम जवानी दीवानी।

आरडी बर्मन ने बतौर गिटारिस्ट ही भूपिंदर सिंह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में पंचम से गाने भी गवाए। सन 1972 फिल्म परिचय।

ऐसा नहीं है कि भूपिंदर सिंह ने सिर्फ आर डी बर्मन के लिए ही अपने गिटार के तार छेड़े। भूपिंदर सिंह ने मदन मोहन के लिए कुछ फिल्मों में गिटार बजाया, जैसे फिल्म

फिल्म कादंबरी के इस गाने में भूपिंदर सिंह ने गिटार बजाया, संगीत वलायत खान साहब का था। आशा भोसले का ये गाना, कविता अमृता प्रीतम।

इस गाने में भूपिंदर सिंह ने एकॉस्टिक गिटार बजाया, सुनील कौशिक ने इलेक्ट्रिक गिटार, फ्रेंको वाज ने ड्रम्स बजाए और आज के जमाने के जाने माने संगीतकार ए आर रहमान तब इलैया राजा के साथ कीबोर्ड बजाया।

0: लगा दे।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने खास तौर पर भूपेंद्र सिंह को याद किया और फोकस किया उन गानों पर जिनमें है भूपेंद्र सिंह का बजाया गिटार, पर उनकी आवाज के बिना इस कार्यक्रम को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो एक झलक उनके कुछ मशहूर गानों की।

भूपिंदर सिंह तो चले गए, लेकिन रह गए वो गाने जिनमें उनका गिटार है, रह गई उनकी गजलें और रह गए उनके फिल्मी गाने। भूपिंदर सिंह हमें हमेशा शिद्दत से याद आएंगे। विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है छाया गीत। आप सभी को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। सावन की फुहारें चारों ओर अपनी खुशबू बिखेर रही हैं। कहीं भीगती गलियां हैं तो कहीं बारिश के गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। लेकिन इस खुशनुमा मौसम में भी एक दिल ऐसा है जो किसी अपने की याद में खोया हुआ है। मौसम मुस्कुरा रहा है मगर उसकी आंखें किसी के इंतजार में रास्ता देख रही हैं।

0: श्रोताओं, सावन का मौसम जहाँ प्रकृति को हरा भरा कर देता है, वहीं विरह के क्षणों को और भी गहरा बना देता है। बरसती फुहारें, बहती नदियां और घिरती काली घटाएं मन में किसी अपने की याद जगा जाती हैं। दूर बसे प्रियतम की प्रतीक्षा में बीतते दिन और लंबी लगती रातें इस मौसम की एक अलग ही कहानी कहती है।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर।
3: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर।
2: पवन करे शोर।
3: हाँ जी।

बरसात का मौसम यादों का मौसम भी होता है। खिड़की पर गिरती बूंदे, ठंडी हवा के झोंके और भीगती हुई शामें अक्सर उन लोगों की याद दिला जाती हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर बूंद कोई पुराना संदेश लेकर आई हो। मन बार बार उन्हीं बीते पलों में लौट जाना चाहता है जहां साथ था, बातें थी और ढेर सारी मुस्कानें थी।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। सावन की इस रिमझिम में एक उम्मीद भी छुपी होती है, शायद कोई खबर आए, शायद कोई आवाज सुनाई दे, या शायद अचानक कोई याद ही दिल को सुकून दे जाए। इंतजार कभी आसान नहीं होता, लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी पहचान भी यही है कि वह उम्मीद का साथ नहीं छोड़ता। यही उम्मीद मन को हर मौसम में जिंदा रखती है।

बाहर सावन की रिमझिम है, लेकिन भीतर स्मृतियों का एक लंबा और नीरव मौसम पसरा हुआ है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है, फिर भी कुछ चेहरे, कुछ आवाजें और कुछ एहसास दिल से दूर नहीं हो पाते। बीते हुए कल की धुंधली परछाइयां आज भी मन के आकाश पर मंडराती रहती है। एक अनजानी सी कसक, एक अधूरी सी चाह और एक गहरा सा खालीपन पंक्ति में महसूस होता है, और एक गहरा सा खालीपन हर पंक्ति में महसूस होता है। ये गीत उस मौन पीड़ा का स्वर है जो अक्सर आंखों से

नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों से बहती है। यादों का ये बोझ दुख नहीं बल्कि प्रेम की अमिट छाप बनकर जीवन के साथ चलता है।

जिंदगी यादों में ही ठहर जाने वाली है। जब जब बादल गहराएंगे, दिल के खालीपन को छू जाएंगे। कुछ चेहरे धुंध बनकर आंखों में उतरेंगे, कुछ अधूरी बातें फिर से दस्तक देगी। बरसात की हर बूंदों में बीते लम्हों की, बरसात की हर बूंद में बीते लम्हों की आहट होगी, और हम मुस्कुराते हुए भी किसी अपने को चुपचाप याद कर रहे होंगे। बारिश की ये बूंदे यूं ही गुनगुनाती रहे, यादें यूं ही महकती रहें, और दिलों में बसी उम्मीदें हमेशा रोशन रहे।

0: इसी कामना के साथ मुझे यानी प्रीति मिश्रा को छाया गीत यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातादर रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने

0: लीजिए डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार सीबीएसई ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अड़प्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਦ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਤੇ 20 ਸਕਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਬਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੈ ਹਿੰਦ।